0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

ज्ञानात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्रावण मास में शिव पूजा और शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है वो मैं प्रस्तुत करूँगा। हिंदू परंपरा में श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में श्रद्धा भक्ति और नियम से शिव पूजा करने से मन की शांति, परिवार में सुख समृद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। शिव पूजा से लक्ष्मी कृपा के लिए सरल विधि, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के शिवलिंग पर जल या गंगा जल अर्पित करें। दूध, दही, शहद, घी आदि से पंचामृत से अभिषेक करें। यदि संभव हो तो बिल्व पत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या तो महामृत्युंजय मंत्र जप करें और मन का संकल्प करें। बिल्वाष्टकम और शिव चालीसा का अवश्य पाठ करें। शुभ लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए भगवान शिव के सामने शिव चालीसा का पाठ करने से अत्यंत फलदायी होता है और शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता पार्वती का स्मरण करें क्योंकि शिव पार्वती की पूजा को गृहस्थ जीवन में सुख और समृद्धि, समृद्धि माने तो या तो शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति समृद्धि से जोड़ा जाता है। लक्ष्मी कृपा के लिए प्रार्थना करें, हे भगवान शिव और माता पार्वती, मेरे घर में सदैव शांति, सदाचार, अन्न धन और सुख समृद्धि बनाए रखें। वैसी भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जहाँ शिव की कृपा होती है वहाँ शुद्धता और समृद्धिता अवश्य होता है। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ईमानदार कर्म, दान, संयम और सदाचार को भी महत्व माना गया है। यदि आप चाहे तो भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में सुबह शाम, प्रातः और रात्रि में अवश्य करें और माता पार्वती की भी आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव की आराधना के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारे घर में आरोग्य और समृद्धि की अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ पर एक श्लोक में कहा गया है, कर चरण कृतम वा काय जम कर्म जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतक क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। उसका मीनिंग है, हे करुणा के सागर भगवान महादेव, हाथ पैर वाणी शरीर मन या कर्म से जाने अनजाने जो भी भूल हुई है उन्हें क्षमा करें और अपनी कृपा प्रदान करें।

0: हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। आज के ध्यान के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

0: नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। बुद्धे यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुते बलम कूपं सिंहसु मधुमन्तः शश्वेनं निपातितं। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ से प्राप्त होगा। किसी खरगोश ने मंदोमन सिंह को कुएं में गिरा दिया था। सपिंडनाय गजतो यदि क्रियते तप फलम तद्वेनम वैधम तस्म सुविधितम तप। यदि जगत को पीड़ा पहुंचाने के लिए तप किया जाए तो उसका फल नष्ट समझना चाहिए। अतः उत्तम उद्देश्य के लिए किया गया तप फल होता है। सर्वे तद्दुलम तद्युतम यदि बुद्धियाताम विरचयेत इदम निश्चितम कीपाणि यूनम हिताम योगम कृते धर्म जीवा तुल्यम च कवापिम तम जितयेत तस्मान् त्रणिनम कार्य विजेतम यनभी अस्मिन्दम रक्षते जीवे त्रैलोक्यम रक्षते भवेत धाते धाते धन्युत्यातनम तम धनयेह न हिंसाम दृष्ट्यते पापम त्रैलोक्यम सदा चरेत हिंसा को नरकम क्षते त्वं स्वर्गम गच्छते हितम भेतिस्ता भयम देह व्याधिभ्यम तभूषणम दिव्या विद्यार्थिनीम विद्या देयम यत्रम सुधातर। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी सम्मान है, ऐसा निश्चित करके किसी को कभी किसी भी जीव को हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। अतः ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयल लोगों द्वारा मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज सैटरडे 8 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए शिव सती चरित्र को हम आगे बढ़ाएं। माँ सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए तैयार होती है। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं

संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है।

जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार कौन बरावे, मन में ऐसा कहकर भगवान शिव भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती वहां से गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे।

सती माता ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए जो युक्ति अपनाई है, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। आज इसको यही विराम दो, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि। श्रावण।

0: हमारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र, प्रस्तोता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर्याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतीभ्य समाभ्य। प्रिय श्रोताओ, ये मंत्र ईशोपनिषद का है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय। कितनी सुंदर ईश्वर की परिभाषा इसके अंदर दी है। ईश्वर को, भगवान को हम कैसे माने? सपरियगात, कण कण में व्याप्त है, शुक्रम और सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है वह अपने उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना दुनिया का, इसमें किसी की सहायता नहीं लेता, इसीलिए उसको शुक्रम कहा है। और परमात्मा कैसा है? अकायम, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित है, इसीलिए परमात्मा तीनों प्रकार के शरीर से रहित है। रामचरितमानस में लिखा है ना, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना कर बिनु कर्म करै विधि नाना।

शेषाव। क्या मतलब कि परमात्मा का शरीर नहीं, शरीर नहीं तो कोई फोड़े फुंसी नहीं हो सकते, नस नाड़ियों से रहित है। और कैसे हैं परमात्मा? शुद्धम परम पवित्र है, अपाप विद्धम निष्पाप है, वह कभी पाप से विद्ध नहीं होता। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे विशेषण भगवान के दिए हैं। कवि है, कवि का मतलब है क्रांतदर्शी है, विद्वान है। इसीलिए तो परमात्मा ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए संसार के आदि में वेद का ज्ञान दिया और कहा कि इससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, संसार के नॉलेज को ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए परमात्मा को कवि कहा गया है, मनीषी कहा गया है। वह भगवान हमारे सबके मनों को गति देने वाला है, जानने वाला है, स्वयंभू है, अर्थात उसके होने में वही प्रमाण है, कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए कहा ना, सेल्फ ओरिजिनेटेड, स्वयंभू, परिभू। और संसार में जो गलत काम करने वाले हैं, दुष्ट हैं, पापियों का पराभव करने वाला है। और कितनी सुंदर बात कही है, याथा तथ्यतोर्थान व्यदधाच्छाश्वतिभ्य समाभ्य। समस्त प्रजाओं को अनादिकाल से जीवों के कल्याण के लिए पदार्थों को ठीक ठीक देता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे कर्मों के अनुकूल परमात्मा, समा का अर्थ है प्रजा, उन सारे प्रजाओं को अपने अपने किए हुए कर्मों के आधार पर वह अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो शब्द आए स्वयंभू, यह किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। स्वयं भवति, जो स्वयं हो रहा है, जिसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। इसीलिए उपनिषद कहता है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये समस्त प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवन धारण करते हैं, ऐसा परमात्मा है। बहुत सुंदर परिभाषा इसमें दी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।

प्रीतात् बाधस्व मा सुचरिते भज उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृता अनु ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, चरित्र मानव जीवन की अमूल्य संपत्ति है। चरित्रवान व्यक्ति का प्रत्येक स्थान पर आदर और सम्मान होता है। चरित्रवान दूसरों पर अपने विचारों की छाप लगा देता है। गेरुए वस्त्र, सिर पर पगड़ी, हाथ में लोटा और कंधे पर चादर डाले स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में शिकागो के किसी मार्ग पर भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते उन्होंने अपने पीछे चलने वाले एक स्त्री पुरुष के जोड़े को अपने वस्त्रों के संबंध में यूं कहते सुना, लुक एट दिस जेंटलमैन, इस महाशय को देखो। स्वामी जी समझ गए कि अमेरिका निवासी मेरी भारतीय वेशभूषा को हीन दृष्टि से देखकर इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अतः वे रुके और उस महिला को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय बहन, इन कपड़ों को देखकर आश्चर्य मत करो। देखो, इस देश के पुरुषों को तो कपड़े सज्जन बनाते हैं, परंतु जिस देश का मैं निवासी हूँ वह चरित्र ही मनुष्य को सज्जन बनाता है। इस अपूर्व बात को सुनकर वह दंपति विवेकानंद जी के चरणों में झुक गए। श्रोताओं, यदि आप भी कुछ बनना चाहते हैं तो चरित्रवान बनो। चरित्रवान बनने के लिए जीवित सदाचारी स्त्री पुरुषों के मध्य में रहो। आप ऐसे समाज में रहो जो आपके आदर्श तक पहुंचाने में आपका सहायक हो। समाज को ही आप अपना मंदिर समझें। अपने आप को किसी ऐसे महापुरुष से संबंधित कर दो जिसका जीवन सादा हो, जो सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, अक्रोधी, संतोषी और कर्मशील हो। जिन महापुरुषों के नाम इतिहास में सूर्य और चंद्रमा की भांति चमकते हैं, उनकी जीवनियों को पढ़ो। उनके जीवन चरित्रों को पढ़ने से आपके जीवन में भी चमक और ज्योति आएगी। आपका चरित्र महान बनेगा। श्रोताओं, पेट के लिए अपना धर्म मत छोड़ो। ईश्वर को अंधा बनाने का प्रयत्न मत करो। पाप करने से डरो और चरित्रवान बनो। अंत में एक कवि के शब्दों में प्रभु से प्रार्थना है, सत्संग सेवा सत्य से प्रेरित हमारा प्राण हो, माँ भारती के बालकों का शुभ चरित्र निर्माण हो। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।

0: वृषभस्तिग्मशृङ्गः पर्यग्ने परिसूर्य बभूव यो विष्टब्नाति पृथिवीं देवं च तस्मादेव अधि अधिसृष्टिः सृजन्ते।
1: सृष्टिकर्ता परमात्मा निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। सूर्य पृथ्वी आदि जितने भी ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा उपादान कारण से ही ग्रह नक्षत्रों का निर्माण करता है। महाशक्ति तीव्र तेज वाले सृष्टि का सृजन करने वाले परमेश्वर पृथ्वी सूर्य एवं अग्नि जल वायु आकाश आदि तत्वों को अपने सामर्थ्य और नियम से व्यवस्थित कर रखा है। पृथ्वी आदि सभी ग्रह नक्षत्रों को गति प्रदान करने वाले और अपने दिव्य नियम से चलाने वाले ईश्वर संपूर्ण सृष्टि का परम पालनहार हैं।
0: ओम अनिक्षरारिजवः सन्तु पन्थानो ये भिः सखायो यन्ति नो वरेयम् संभगेन समर्यम्नाः संधाता सृजत्तु वर्चसा।
1: हमारे जीवन का मार्ग कांटों से भरा हुआ न हो, हम सब का जीवन विघ्नों आपदाओं कष्टों और शत्रुओं से रहित हो, हम श्रेष्ठ जनों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। जब हम और हमारे मित्र उस विघ्न रहित मार्ग पर ईश्वर के विधान और नियम के अनुसार चलते हैं तो धारण और पोषण करने वाला परमेश्वर हमें ऐश्वर्य और श्रेष्ठ व्यवहार के साथ जोड़ते हैं। हम अपने श्रेष्ठ व्यवहार से अन्यों का मान सम्मान करते हैं, कदापि किसी का तिरस्कार नहीं करते या अपमान नहीं करते, तभी हम प्रतापी होकर अन्यों की भलाई कर सकते हैं। परमात्मा की उपासना और देव स्वरूप विद्वानों का सम्मान करते हुए हम प्रतापवान ऐश्वर्यवान भाग्यवान और चरित्रवान बने।
0: ओम वाचस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तल्पानः सुषेवा इहैव प्राणः सख्येनो अस्तु तन्वा परमेष्ठिन् पर्यग्निरायुषा वर्चसा दधातु।
1: परमेश्वर का ध्यान करते हुए हम लोग विद्या तप और उचित पुरुषार्थ द्वारा संसार के पदार्थों को उपयोगी बनावें। संसार में जब पदार्थों का सही उपयोग होता है तो संसार का कल्याण होता है। वेद का स्वामी वाचस्पति परमेश्वर हम सब जीवों के लिए अन्न धन वैभव आदि से धरती को सुखदायक बनाते हैं। मनुष्य विद्या और तप के द्वारा उस सुख को पाने में सफल होते हैं, तभी हमारे निवास स्थान और धर्मस्थल में सुख शांति का संचार होता है। जिस प्राणवायु को धारण करके अपने को सामर्थ्यवान बनाते हैं वह प्राण शक्ति हमारे मित्र के समान हो। सबसे श्रेष्ठ और परम पद धारण करने वाले परमेश्वर सब मनुष्यों को प्रकाशवान ज्ञानवान विद्यावान दीर्घायु और वर्चस्वी होने का सौभाग्य प्रदान करें।
0: ओम शांति।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है। संध्या नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीत कर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ी और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियनो की टूर दे फ्रांस फाम में शानदार जीत की भी सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि हुई है उसमें। मॉरिशस में उधर स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की गई है। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस समय उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी कि लाभों का दावा कर सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5,00,000 रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। और उधर एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति, कम कर्ज और मजबूत लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयरहोल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और विशेषकर ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। कोहरा छाएगा और हवा पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर।
2: Your weather forecast on RM2. Radio Mustique.

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क को काफ़ी समझे, ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। मौज़ सामईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात सवाल खैर RM3 के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द और नातो सलाम। ताखिर ना करते हुए आइए सुकून कल्ब के लिए आगाज़ करते हैं कलामे इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम।

और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे।

और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम न तो इस कुरान को मानेंगे और न उन किताबों को जो इससे पहले की हैं, और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे।

और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे, बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा।

और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने यह जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के, और यह भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद

0: और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन चैन से बुलंद बाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे।
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ।
0: कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा, वो सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है।

और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो।

और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है, और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हों, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा, और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी, और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे, फिर उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया सो मेरा अजाब कैसा हुआ।

कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं, ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा, मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है।

कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, नजदीक है।

और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे।

0: और इनमें और इनकी ख्वाहिशों में पर्दा हायल कर दिया गया, जैसा कि पहले इनके हम जिंसों से किया गया, वो भी उलझन में डालने वाले शक में पड़े।
1: सदकल्लाहुल अजीम। ए पाक परवरदिगार, हमें

कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला कुछ दरवाज़े हमारी बेहतरी और हिफाजत के लिए बंद करता है, लेकिन हम अपनी उंगलियों को उन्हीं दरवाज़ों में फंसाते हैं, फिर वो तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाती है। हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए उसकी मसलहतों पे। क्या हुआ कि अगर हमारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, दुआएं मांगें, बार बार मांगें, जो चाहे मांगें, लेकिन उस ज़ात पाक की मसलहतों पे यकीन रखें। जो हो गया हो रहा है और जो होगा उसमें ज़रूर हमारी बेहतरी है।

मोहतरम सामीन, आज हम बात करेंगे खाने के आदाब और खाने के मुतालिक चंद सुन्नतों के हवाले से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए

आए तो जूते उतार डालो, इसलिए कि जूतों के उतार डालने से कदमों को बहुत आराम मिलता है। बहवाला इब्ने माजा शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना भी तनावल फरमाया करते थे, अगरचा खजूर के चंद दाने ही क्यों ना हों, और फरमाया करते थे कि इशा का खाना छोड़ देना बुढ़ापा लाता है। मौज़े सामीन, जिस कदर खाना मैसर हो उस पर कनात करना, यानी जैसा भी और जितना भी मिल जाए उस पर राज़ी रहना और उसको अल्लाह ताला का फ़ज़ल समझकर खाना चाहिए, और ये नियत रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के हुक्म के मातहत उसकी इबादत पर क़ुव्वते हासिल होने के लिए

एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाया गया और फिर वो खाना हमारे सामने रखा गया। हम अगरचा भूखे थे और ख्वाहिश रखते थे, मगर जैसा कि आदत होती है महज तकल्लुफन हमने कहा कि हमें खाने की ख्वाहिश नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि भूख और झूठ को जमा ना करो। मौज़ सामीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन उंगलियों से यानी अंगूठे, शहादत की उंगली और बीच की उंगली के साथ खाना खाया करते और खाने से फरागत के बाद अपना हाथ किसी रोमाल वगैरह से पोंछते या धोने से पहले चाट लिया करते थे। अल्लाह पाक हम सब को इन सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, सब प्रकार की पवित्रता में आभ्यंतर पवित्रता को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जो अंदर से पवित्र नहीं वह पवित्र नहीं माना जाता है। यह भी माना जाता है कि चित्त का एक स्थान में ही बंधन कर देना, एक स्थान में ही मन का लगाना धारणा कहलाती है, और भक्त इसी परम ज्योति में तल्लीन होकर ईश्वर का ध्यान लगाता है।

मनुष्य को धन जन यौवन आदि का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल यह सब कुछ निमेश मात्र में हर लेता है। इसलिए इस मायामय संसार को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, जहाँ ब्रह्म की प्राप्ति हो तथा जहाँ पहुँचकर पांचों इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और मन ज्ञान युक्त हो जाता है।

श्रोताओ, ईश्वर का साथ हमें पाप कर्मों से बचाता है और हित कर्मों की ओर प्रवृत्त कराता है। दुखों में भी ईश्वर ही सहन शक्ति प्रदान करते हैं। आपत्ति आने पर जो साथ दे, उस परमात्मा के प्रति सदैव कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए।

श्रोताओं, ईश्वर का भक्त मन वचन तथा कर्म से कभी किसी को दुख नहीं देता। वह तो सर्वथा शुद्ध विचार रखने वाला है। वह भी अपने इष्ट की तरह दीन दुखियों पर दया दिखाते हुए अच्छाई की राह पर आरूढ़ होता है और क्षमा दान आदि गुणों को अपनाते हुए धर्माचरण में लगा रहता है।

श्रोताओ, संसार में आए हैं तो मानव के नाते हमारा सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। हमें अप्रिय वचनों का कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए, अपितु हमें सदैव सत्यवाणी का उच्चारण करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए।

श्रोताओं, ईश्वर सद्बुद्धि के दाता हैं। जिनके मन में प्रभु का वास है, वे सज्जन पुरुष कठोरता तथा परद्रोह को सर्वथा त्याग देते हैं और शांत रहते हैं।

श्रद्धावान एवं दयावान भक्त सदा प्रभु से ऐक्य की भावना का असीम अनुभव करते हैं। जीवन में इस ऐक्य की उपलब्धि परम श्रद्धालुओं को ही प्राप्त होती है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

简单真挚的爱意藏在往日时光，旧时街巷街角小店留存着许许多多逛往片段，熟悉旋律响起。

山野的心事无处诉说，万般情绪尽数奔赴汪洋大海，难过怅然都交由海风抚平。请欣赏张雨生带来的《大海》。

望向无垠沧海，感慨前路起落波折，纵使沿途满是坎坷，依旧坚守本心，奔赴远方。请欣赏《海阔天空》。

0: श्री सुंदर संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना होगी। संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया जिन पर वे जल्द ही काम शुरू करेंगे। कॉमनवेल्थ खेलों के इस 2026 संस्करण में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल चार पदक जीतकर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियनो की टू डी फ्रांस महिला श्रेणी में शानदार जीत की भी सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि आई है उसमें। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास समय सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी के लाभों का दावा कर सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5,00,000 रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति, कम कर्ज और मजबूत लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयरहोल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। दुनिया में जारी सबसे बड़े कोरल ब्लीचिंग संकट के बीच मॉरिशस में एक अध्ययन ने कई उम्मीद जगाई हैं। लाकोंब्यूज में किए गए शोध से पता चला है कि कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भीतियों की बहाली से समुद्र के बढ़ते तापमान के प्रभावों के खिलाफ उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, जहां कुछ संरचनाओं में 70% से अधिक जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात भर हुए रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। हमलों में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 लोग घायल हुए। ये हमला यूक्रेन में हालिया रूसी हमलों में 21 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की राजधानी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे, ये उनकी पहली सर्बिया यात्रा है।

0: और उधर स्पेन ने इटली से आने वाली हवाई और समुद्री यात्राओं पर सीमा नियंत्रण लागू कर दिया है। ये कदम इटली द्वारा स्पेन से आने वाले लोगों पर इसी तरह की जांच शुरू करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। दोनों देशों के बीच विवाद मोरक्को से करीब 78,000 प्रवासियों के स्पेन के सेउता पहुंचने के बाद बढ़ा। स्पेन ने इटली से जांच हटाने की मांग की है, लेकिन रोम ने इसे कम से कम 15 अगस्त तक जारी रखने की बात कही। इटली ने कहा है कि सुरक्षा जोखिम खत्म होने तक वह अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचार की ओर। शोक समाचार सुनिए। सिमिट्री रोड वाकवा में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राम दुखित जिन्हें विद्यानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले सेबास्टोपोल के रहने वाले थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे दुर्शित वर्मा दुखित के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Check your time, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: सभी दोस्तों को हेलो नमस्कार आदाब। सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है जो अभी रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रसारित हो रहा है और साथ दे रही है आप ही की सखी आप ही की सहेली अनीता अभी से लेकर 2 बजे तक। ऑफ कोर्स दोस्तों यहां पर पुराने गीतों का कारवा जो है शुरू हो चुका है और हम आपके इस सैटरडे आफ्टरनून में रंग भरने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए आपको भी जो है साथ देना है। सो ऑफ कोर्स स्टे ट्यून। तो चलिए पहले नगमे की ओर बढ़ते हैं। मेरी पसंद की गाना है आप लोगों के नाम, हमारे प्यारे लिसनर्स के नाम।
6: कुछ

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर।
2: श्रोताओं, फिल्म अनुपमा का यह गीत कितना खूबसूरत गीत है। सुनने में बहुत सरल दिखता है, किंतु इसे बहुत भावपूर्ण ढंग से गाया गया है कि श्रोतागण जो हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस गीत को सुनकर मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी काफी जवान थे तथा शर्मिला जी बेहद खूबसूरत दिख रही थी। जी दोस्तों, ऑफ कोर्स सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर। आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम यहां पर हाजिर हो गए हैं और इसी प्रकार प्यारे प्यारे नगमों के साथ हम आपका मनोरंजन करेंगे। तो चलिए और एक खूबसूरत गाने की ओर बढ़ते हैं। फिल्म है सितारा।

0: खाना सफर।
1: जी दोस्तों, थोड़ी सी जमी, थोड़ा सा आसमां और एक आशियां, और क्या चाहिए जीवन में, और जो कुछ है उसी में सबूरी करना चाहिए। और वैसे दोस्तों, 70 व 80 के दशक का जो संगीत है अपने आप में एक जादू समेटे हुए है। जब भूपिंदर सिंह की मखमली आवाज़ और लता जी की सुरीली गायकी एक साथ मिलती है तो एक अद्भुत सुकून सा अनुभव होता है। फिल्म सितारा का यह गीत थोड़ी सी जमी थोड़ा आसमां खुशियों और सुकून का प्रतीक है। गुलजार साहब के शब्द और आरती बर्मन का संगीत इस गीत को अमर बना देते हैं। यह गाना हमें उन हसीन पलों की याद दिलाती है जहां जिंदगी छोटी लगती है पर खुशियां बेहिसाब है। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अभी जो है श्रावण मास चल रहा है और कई लोग जो है यज्ञ पूजा हवन ये सब कर ही रहे हैं। और यहाँ हमारे पहले कॉलर शीला जी ने हमें फ़ोन किया और वे कहती है कि कल उनके यहाँ भी श्रावण मास की पूजा है और इसलिए उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का गाना मांगा है। और इस गाने को वे डेडिकेट कर रही है पूरे मकुना परिवार को, बनमेया के पूरे मकुना परिवार, साथ ही साथ सभी भाभी भाई, गांव के लोग और किसुंदयाल परिवार है, अगी परिवार है, गजनत परिवार पितों से हैं जिन्होंने साथ दिया इस पूजा को।

ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका जो है आयोजन करने के लिए सभी ने साथ दिया तो उन सब के नाम आप यहां गाना डेडिकेट करना चाहती है तो चलिए इस भक्तिपूर्ण गाने का आनंद लेते हैं।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर राघव गुप से शर्मा जी का फ़ोन आया और आप कहती है कि 6 तारीख को आपके भाई जयप्रकाश और भाभी नम्रता की शादी की सालगिरह थी, तो परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से उनके दो बेटे हैं केशव युधिष है, आपकी ओर से और पूरे परिवार की ओर से उन दोनों को शादी की सालगिरह ढेर सारी शुभकामनाएँ आप दे रही है। साथ ही साथ आप कहती है कि वो आप दोनों के बीच सदैव प्रेम और मोहब्बत का सृजन रहे, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ आप जीवन में हर वक्त एक दूसरे का साथ दो और जीवन की राह में सदा साथ साथ चले। तो ये थी ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को जयप्रकाश जी और नम्रता जी शादी की सालगिरह के मौके पर, और आशा करते कि यूं ही आपका जो प्यार है वो बढ़ता रहे। तो आपने उनके लिए डेडिकेट किया है एक प्यारा सा गाना, फिल्म है गूंज उठी शहनाई।

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, 12:30 हैं, 12:30 हुए हैं और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर। आपके डेडिकेशन ऑन 5250-6200 या फिर आप फोन भी कर सकते हैं 4028070 पर। और सैटरडे का दिन है, कुछ तो ऑफ कोर्स मस्ती होनी चाहिए, मज़ा होना चाहिए और कुछ लोग रिलैक्स करना पसंद करते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते वे काम करते हैं और एक शनिवार या वीकेंड मिलता है, संडे या सैटरडे का दिन मिलता है जहां पर वे विश्राम कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा समय अपने के लिए, और शायद अभी तो घर के कामकाज पूरे हो चुके हैं और आप शायद नाश्ता भी कर रहे हैं, तो इफ़ यू हैविंग लंच बन अपेटी और हमारे कार्यक्रम को ज़रूर एंजॉय कीजिए। और कुछ लोग जो है इस समय जो है रिलैक्स करके हमारे कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, तो इसके लिए कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपके इस आफ्टरनून को मज़ेदार बनाएंगे और यहाँ पर देवयानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है रिश्मा फ्लक से और आप सुनना चाहती है फिल्म मदर इंडिया का प्यारा सा गाना, एंड यही गाना जाएगा छेदी परिवार और देवधारी परिवार के नाम।

दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। लोग कभी रिश्तों की अहमियत नहीं समझते। जहां एक इंसान उसी रिश्ते से जाने की कोशिश करता है और वही दूसरा इंसान उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, यही जिंदगी की सच्चाई है। एक दौर यहां, एक दौर वहां खींचा चला जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि उन लोगों की कदर इज्जत करो जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। और इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ता। ये लम्हा फिलहाल जी लेने दे। जी दोस्तों, गुडलैंड से सरिता जी साथ दे रही है। थैंक यू फॉर योर स्वीट मैसेज सरिता जी। और आप कहती है आपकी प्यारी प्यारी बातें दिल जीत लेती है। थैंक यू इसके लिए। आपकी फरमाइश है फिल्म, पुरानी फिल्म दोस्ताना का गाना, और यही गाना जाएगा आपके पूरे परिवार के नाम और सभी सुनने वालों के नाम। थैंक यू जी। तो चलिए यह गाना आपके नाम।

जी दोस्तों, यहाँ पर माधुरी जी साथ दे रही है और आप कहती है हम भी आपके साथ साथ हैं। थैंक यू जी। और आपकी फरमाइश है फिल्म बुलेट का गाना, तो चलिए यहाँ प्यारा सा गाना आपके नाम और सभी सुनने वालों के नाम।

जी नहीं, हम यहीं पर हैं आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए, और कठोर बोर्ड से प्रमिला जी साथ दे रही हैं। आपकी फरमाइश है फिल्म गोपी का गाना, और यही गाना जाएगा आपके दो बेस्ट फ्रेंड के नाम, निर्वाण विहान है और उनके मामा पापा है, मौसी है, मौसा है, रेणुका है, यश है, वंदना है, प्रकाश है, उन सब के नाम यह गाना जाएगा। और साथ ही साथ यही गाना जाएगा सोलफेरिनो वाकुआ से विश्वानी पूरन जी के नाम, और सुबोध जी जो हैं वाकुआ से हमें सुन रहे हैं, तो इसी प्रकार साथ देते रहना। रामचंद्र कह गए सिया से।

जी दोस्तों, पिछले वर्ष से अनीता जी साथ दे रही हैं और श्रावण मास के उपलक्ष में आपने फिल्म याराना का गाना मांगा और आप कहती है कि आपकी ओर से और आपके परिवार की ओर से सभी को श्रावण मास की ढेर सारे शुभकामनाएं। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। 2025 में इनमें 3.4% की वृद्धि हुई, जबकि मॉरिशस में दफनाए जाने वाले कचरे की मात्रा में 17% की भारी वृद्धि हुई। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर आई नवीनतम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय और पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच हुए समझौते से मॉरिशस को वैस्कुलर डिजीज, रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में चीनी विशेषज्ञों की विशेषज्ञता, उन्नत उपकरणों और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। सरकारी और निजी कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले टैक्स वर्ष के कर लाभों का दावा करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। 320 मिलियन रुपए, ये इस साल की पहली छह माह में एमटेल का मुनाफा है। ये टेलीकॉम ऑपरेटर घटते कर्ज और मजबूत होते मार्जिन के साथ एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखा रहा है। ये नतीजे शेयर होल्डरों को भी फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि समूह अब उन्हें साल के अंत में डिविडेंड प्राप्त करने का एक नया तरीका प्रदान कर रहा है। और विदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC में इबोला के 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसे देखते हुए WHO के विशेषज्ञों ने बिना टीके वाले घातक बुंडीबुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ मौजूदा टीके के बड़े पैमाने पर मानव परीक्षण की सिफारिश की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। निजी शोक समाचार सुनिए। भगेलू लेन मोफेटसिल न्यू ग्रोव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मणिबाई नवजी, पैदाइशी नाम सुकिया और जो मित्रा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके पति धनंजय नवजी के घर भगेलू लेन मोफेटसिल न्यू ग्रोव से उठाकर रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 फ्री। रोड प्रोविडेंस का थी मिलिटिया में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी चेमैन, पैदाइशी नाम मोदिली और जो अम्मा चेमैन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज सुबह 3:30 बजे उनके घर रोड प्रोविडेंस का थी मिलिटिया से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 फ्री। कौ आकाशिया पुस दे फ्लाक में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री बुद्धराम गुना, जो विजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:00 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रजनी गुना के घर कौ आकाशिया पुस दे फ्लाक से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:00 PM। सिमेट्री रोड वाकवा में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राम दुखित, जो विधानंद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4:00 बजे उनके बेटे दर्शित वर्मा दुखित के घर सिमेट्री रोड वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम में पुनः आप लोगों का स्वागत है, जो अभी रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रसारित हो रहा है। अनीता साथ दे रही है और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैटरडे का दिन है और तारीख है 8 अगस्त, अर्थात 8-8। तो बना कमाल की बात ना, 8-8 है। और अगर आपको कोई विश करना है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि 8-8 का जो पोर्टल है वो शायद फिर से ना मिले, तो एक विश ज़रूर कर देना। और यहाँ पर जो है अनीता जी फिकम फ्लैक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आप कहती हैं कि आपके जीजू जो है धनराज विशेषर जी 70 वर्ष के हो गए हैं, तो हम आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू धनराज जी। और एक बहुत ही अच्छा दिन है सैटरडे के दिन, जब वीकेंड के दिन बर्थडे जो है आता है तो एक मौका मिल जाता है पूरे परिवार को जुड़ने के लिए, साथ रहने के लिए, एक साथ वक्त बिताने के लिए, तो बहुत ही खास मौका है। और आप कहती है कि वैसे रात्रि में जो है पार्टी होगी, तो बेशक एंजॉय योर पार्टी। और साथ ही साथ आप कहती है कि श्यामा, आपकी प्यारी सखी श्यामा जी के पति कविराज चौहान जो हैं वे विदेश से स्वदेश आ रहे हैं कल, और इसलिए जो श्यामा जी हैं वो कार्यक्रम सुन रही हैं, और वे कहती है कि थोड़ा सा फिल्म याराना का गाना बजवा देना, मेरा पिया घर आया। तो ऑफ कोर्स डबल खुशी का मौका है, बर्थडे है, पति भी आ रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए यहाँ गाना आपके नाम, ऑफ कोर्स कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, चलिए यह गाना आप सबके नाम।

0: हाय हाय। वेल रोजिल से साचित जी जो हैं साथ है दे रहे हैं और आप सुनना चाहते हैं फिल्म खत्म ही था का प्यारा सा गाना और यही गाना चाहेगा खासकर आपकी सहपाती सरोवर के नाम जो अभी कनाडा में है।
1: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
2: कुछ करने की जरूरत नहीं है हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
1: फिर भी जरीन आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
2: सोचने दो
1: बुरा मत मानना जरीन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज तुम मुझे प्यार करते हो।
1: लेकिन जरीन सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता तुम बड़े घर की लड़की हो तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज तुम मुझे प्यार करते हो।
1: प्यार तो करता हूँ जरीन बहुत प्यार करता हूँ लेकिन
2: प्यार करते हो ना।
1: पर जरीन तुम
0: लविंद्र
3: था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे

जी दोस्तों, नसीब से सच्चे प्यार करने वाले मिलते हैं और यहाँ पर जो है अनीता जी मोंडालविया से साथ दे रही है और आपकी फरमाइश है फिल्म सच्चा झूठा ऑफ कोर्स करुणा के लिए, अमृता के लिए, विनीता के लिए और सभी दोस्तों के लिए।

दोस्तों कहा गया है कि यदि मन खराब हो तो भी खराब शब्द ना बोलिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद मन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन शब्दों को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है। सोचने वाली बात है जी। दोस्तों यहाँ प्यारा सा गाना फिल्म प्यार का क्या कसूर, ऑफ कोर्स फ्रॉम सुदेवी जी, जो मौका से साथ दे रही है अपने पति राज के लिए और हमारी टीम के लिए। थैंक यू जी।

दोस्तों आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जिसे सुनकर मैं स्वयं बहुत जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि कहानी के अंत तक आपको एक बहुत ही अच्छी सीख ज़रूर मिलेगी। दोस्तों कहा जाता है कि जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। आइए समझते हैं इस कहानी में। एक दिन भगवान शिव जी के एक सेवक ने कहा, प्रभु एक दिन मुझे आपकी जगह खड़ा होने दीजिए, आप विश्राम करके आइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि जो भी मंदिर में आएगा कुछ भी कहेगा तुम्हें सिर्फ देखना और सुनना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। सेवक मान गया। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी बिजनेसमैन आया, पूजा करके गया, लेकिन उसका बटुआ वही गिर गया। फिर एक गरीब आदमी आया, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ी। उसने भगवान का धन्यवाद किया और बटुआ लेकर चला गया। कुछ देर बाद एक नाविक, अर्थात जो नाव चलाता है, एक नाविक आया। उसने प्रार्थना की, पूजा की, प्रभु मैं लंबी समुद्री सफर पर जा रहा हूं, मेरा रक्षा करना। जैसे ही नाविक बाहर निकला, पुलिस आई और उसी पर बटुए चोरी करने

का आरोप अर्थात इल्जाम लगाकर पकड़ लिया। यह देखकर सेवक से रहा नहीं गया, वह बोल पड़ा, रुको, चोर यह नाविक नहीं है, वह गरीब आदमी है। रात को भगवान शिव लौटे और सेवक ने पूरे गर्व के साथ पूरी बात बताई। भगवान बोले, तुमने मेरी योजना में हस्तक्षेप इंटरफेरेंस कर दिया। वह व्यापारी था, वह व्यापारी बेईमान था, उसका बतवा गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को वह धन इसलिए मिला था ताकि उसके बच्चों का पेट भर सके, और जिस नाविक को तुम बचाना चाहते थे उसका जहाज अगले ही दिन भीषण तूफान में डूबने वाला था। पुलिस के हिरासत में रहने से उसकी जान बच जाती। भगवान बोले, तुमने एक पल की सच्चाई देखी, लेकिन मैं पूरे समय और हर कर्म का परिणाम देखता हूँ। इसलिए दोस्तों, याद रखिए कि हर घटना के पीछे भगवान, अल्लाह या जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उनकी एक योजना, एक प्लान होती है जिसे हमारी आंखें तुरंत नहीं देख पाती है। इसलिए जब जीवन में कुछ गलत होता दिखाई दे तो घबराए मत, शायद भगवान, अल्लाह या जिस शक्ति पर आप विश्वास करते हैं वह आपको एक बेहतर रास्ता देना चाहते हैं, एक बेहतर रास्ता तैयार करना चाहते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, अगर हमारी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताना। और यहाँ पर सेबास्तोपोल से करुणा जी साथ दे रही हैं, आप कहती हैं एंजॉइंग द सॉन्ग से लव, थैंक यू जी। और आपकी फरमाइश है फिल्म हरी कांड की, शुक्रिया।

जी दोस्तों, क्रेव की ओर से शांति जी साथ दे रही है और आप कहती है कि आपकी बहन रंभा स्विट्जरलैंड से हमें सुन रही है, तो आप उनके लिए रंभा जी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहती है। साथ ही साथ जीजा जी रोडोल्फ हैं, उनकी बेटियां हैं मनीषा, रोमा, शावन हैं, उन सब के नाम आप यह गाना डेडिकेट करना चाहती हैं। और साथ दे रही है ज्योति जी शातुदे बनारस से, और अगला गाना अश्नी, रेखा, सुरेखा और पूरे माधव परिवार के नाम।

में हम रिवेजो रंपो की माला जी का नाम जोड़ते हैं। कनिल है, कविश है, कबीर है, सत्यम है, केविन है, किरण है, शिव है, कंफूको की आंटी जी भी हैं। नोत्रडाम की रेहाना जी है,

जी दोस्तों, फिल्म गुमराह का गाना बुबा सैं के हरीश जी की ओर से अपनी अपनी प्यारी अनु के नाम, और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहते हैं नवीन जी के नाम। मोता ब्लॉन्च से आप सुन रहे हैं, आप आशा जी के फैन हैं, तो चलिए आशा जी और महेंद्र कपूर जी को सुनते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी दोस्तों, देखते ही देखते पता नहीं चलता है कि कैसे यह दो घंटे का सफ़र समाप्त ही होने चला है। और चूंकि हमारे पास एक अंतिम गाना है और गाना थोड़ा लंबा है, तो सभी लोगों के नाम मैं इसी में जोड़ रही हूँ। वैसे तो यह गाना एक कॉलर ने हमें मैसेज करके बोला है कि यह गाना उनके नाम कर दूँ। 90s का गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया।

बताने के लिए जो है बताने से मना किया है, तो आपका नाम नहीं लेंगे। आप जो है आप 90s के फैन है, तो फिल्म क्रिमिनल का गाना आपके नाम ज़रूर जाएगा। आप और आपके जो है आपके लवर के नाम जो है जाएगा यह प्यारा सा गाना। और साथ ही साथ निर्मला जी फ्लैग से साथ दे रही है, और किसी ने हमें मैसेज भेजा था लेकिन नाम नहीं बताया था कि वे फिल्म वे गाना सुनना चाहते हैं सबसे बड़ा रुपया, लेकिन समय की कमी के कारण हम आपके लिए यह गाना बजवा रहे हैं क्रिमिनल का गाना। और साथ ही साथ प्रकाशवती जी ने मैसेज भेजा है, और आप कहती हैं आप काम कर रही थी, मैसेज करने का टाइम नहीं मिला, तो कोई बात नहीं जी, अगला गाना आपके नाम और ऑफ कोर्स कृति के नाम। और मनोज सोहन जी, हमेशा आप फ़ोन करते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ गाना आपके नाम और आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम। और इसी के साथ साथ हम आपसे कहेंगे कि हम आपको जो है यही छोड़े जा रहे हैं। आशा है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, और अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, और इसके बाद 2 बजे समाचार सुन पाएंगे और इतिहास के झड़ों के कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी सुमी जी और अलका जी। तो चलिए यह गाना सुनते हैं।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा के साथ। आपको नमस्कार विधिमा।
1: नमस्कार हंसनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह पोर्ट लुई स्थित सेंट्रल बिल्डिंग में एमएसएम ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया। जूली रोंगर ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लाक में हुई हालिया जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल था। आज सुबह बैन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पुल बेहोंशे ने विपक्ष के नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोआना बेहोंशे को विपक्ष की व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फॉर्मी रीतों प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है। और विदेश में अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में जंगल की आग बुझाने के दौरान दो बड़े हादसे हुए हैं। यूटा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दो लोग सवार थे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: RM3 Radio.

0: इतिहास के झरोखों से।
1: नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ ही चुके होंगे, बहुत प्यारे प्यारे गीत आपने सुने। तो अगस्त का महीना है, इस महीने में मीना कुमारी को नहीं भुलाया जा सकता। अरे बाप, ट्रेजेडी क्वीन थी वे। आंसू गिरा दे तो देखने वाले भी रोने लग जाते थे, और अपने जीवन में भी बहुत दुख सहा उन्होंने। शायद वो जो जिंदगी का दुख था, वह जब एक्टिंग करती थी बस वही स्टेज पे सच में उतरने लग जाता था। सुख की तलाश में जीवन भर भटकती रही, और यहाँ तक कि पीना भी शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी को वे बिल्कुल बेरंग कर रही, जीवन का उद्देश्य संभल नहीं पाई। क्योंकि जब कोई नहीं संभल पाता तभी पीने की ओर बढ़ता है। अपने उद्देश्य को सामने नहीं रख पाई, जबकि इतनी अच्छी कलाकार, अदाकार, और ऐसा नहीं हम कह सकते कि मधुबाला की तरह थी, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग ने, उनकी अदाकारी ने लोगों के दिल पर शासन किया। श्रोताओं, अपने जीवन के दुख को उन्होंने अपने किरदारों में जो उतारा, तो जो भी देखने वाला था वह उस किरदार के साथ बिल्कुल जैसे साधारणीकरण उसका हो जाता है, ऐसे होता रहा। और मीना कुमारी इतिहास के पन्नों में अपना नाम तो लिखी गई। आज भी जब भी उनकी कोई फिल्म देखते हैं, या उनकी एक्टिंग, या कोई गीत, या कोई नृत्य, तो बस दिल को सब छूता है। तो चलिए सुमिता, आज हम मीना कुमारी जी को लेकर ही चर्चा करते हैं।

0: बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते अलका जी, और हमारे सभी श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं। और आज जैसे अलका जी ने बताया कि अगस्त का महीना है, तो मीना कुमारी जी को कैसे भूल सकते हैं। पहली अगस्त 1933 को इनका जन्म हुआ था,
1: वो भी मुंबई में, ऐसे नहीं कि किसी गांव से आई
0: जी,
1: मुंबई में ही।
0: कम उम्र में वो चल भी बसी थी,
1: हाँ, लेकिन बहुत कुछ दे गई छोटी उम्र में भी।
0: और जैसे कि आपने कहा कि सिनेमा के जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाती थी, तो चलिए हम आपसे भी सुनना चाहेंगे मीना कुमारी के से जुड़े कुछ बातें। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो बेशक हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 4028070 होगा नंबर हमारा। पाकिजा फिल्म के इस गाने से प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: तो श्रोताओं, एक गीत का आनंद तो आपने ले ही लिया। सचमुच मीना कुमारी का जो जन्म था वो 1 अगस्त 1933 और 31 मार्च 1972 में उनकी मृत्यु हो गई थी। असल में वे मुस्लिम थी, महजबी बानो उनका नाम था, लेकिन हिंदी फिल्मों में आके उनका नाम मीना कुमारी हो गया। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए उनको ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। ज़्यादातर उन फिल्मों में जो दुखांत फिल्में

0: ट्रेजिक फिल्में थी उसमें जो उन्होंने भूमिकाएं अपनी निभाई वो हमेशा याद की गई, इसीलिए लोग उन्हें कहते थे शोक के रस की महारानी है वो। और मीना कुमारी इसके साथ साथ एक शायर भी थी, वे बहुत सुंदर शायराना करती थी और पार्श्व गायिका मतलब बैक स्टेज सिंगर भी थी। और उन्होंने 1939 से 1972 तक फिल्मी पर्दे पर काम किया। नाज को साल 1951 में एक मशहूर निर्माता से मात्र 18 साल की उम्र में प्रेम हो गया। अब सोचिए फिल्मी दुनिया में ये सब चलता ही है। और उन्होंने छिप कर विवाह किया लेकिन बाद में उनको पता चला कि वे तो शादीशुदा ही थे, इसीलिए मीना कुमारी को वो हक नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए था। और कहते हैं कि वह इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और ना उन्हें अच्छा लगता था, और तन्हाई को उन्होंने अपना मित्र बना लिया, जैसे मैंने पहले कहा कि शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो एक प्यारी सी जिंदगी, एक सुंदर अदाकारा ने अपनी इतनी सुंदर जिंदगी को, जैसे कहते हैं ना कि घुन खा जाता है लकड़ी को, ऐसे उन्होंने इसको भी ख़त्म किया।
1: बिल्कुल। और इनके करियर, एक्टिंग करियर की बात करें अलका जी, तो ये महज 4 साल की थी जब से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने 1939 से लेकर 1940 तक काफ़ी फिल्मों में काम किया, जैसे कि लेदर फेस, अधूरी कहानी, एक ही भूल जैसी फिल्में। और फिर उनकी जो है बतौर एक्ट्रेस उनके करियर की जो शुरुआत हुई वो हुई बच्चों का खेल, इस फिल्म से जो 1946 में रिलीज हुई थी। और उसके बाद क्या था, इन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा और काफ़ी बेहतरीन फिल्में ये देते गई।
0: और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार उन्हें बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम, काजल, इन सब फिल्मों के लिए खूब मिले।

0: इतिहास के झरोखों से
1: चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं इस ट्रेजेडी क्वीन के बारे में कुछ जानने के लिए। लेकिन जब इस तरह की कहानियों को पढ़ते हैं ना, कभी कभी दुख भी होता है। उनकी पारिवारिक परिस्थितियां, फिर गृहस्थी जीवन का दुख, मतलब एक महिला को तोड़ के उसने रख दिया। जबकि ऐसी अदाकारा और कलाकार को यदि परिस्थितियां थोड़ी सी पॉजिटिव या सकारात्मक मिलती तो वो अपनी यात्रा को बहुत लंबा खींच सकती थी। और यहाँ तक कि डायरी भी लिखी उन्होंने, 256 पृष्ठों की डायरी थी और उसमें नज़में और गज़लें वो लिखा भी करती थी। आप सोचिए वो एक लेखिका भी थी और अपनी डायरी उन्होंने मरने से पहले अपने मित्र गुलजार को दी थी। और उनका शेर उसी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पंक्ति है वो यही है कि ये मौत बड़ी खूबसूरत है। मतलब मौत की यात्रा को वो महसूस कर रही थी और मरना चाहती थी। ऐसा नहीं कि अब वे जीना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकीज़ा जैसी फिल्म जब वे बाद में देकर गईं तो आज भी वह हिट फिल्मों में गिनी जाती है। और उनके घर में कोई वातावरण बहुत अच्छा नहीं था, गरीबी थी। यहाँ तक कि उनके पिता अली बख्श, जब उनके बच्चे हुए तो उनको लगा कि मैं कहाँ दो तीन लड़कियाँ पाल पाऊँगा, जाके अनाथ आश्रम छोड़ा है
2: जी, क्योंकि उनको बेटा चाहिए था।
1: बेटा चाहिए था, देखिए वो एक तो उस ज़माने का समय और फिर गरीबी इतनी, और गरीबी में हीरा पैदा हुआ मैं तो कहूँगी, लेकिन ज़माने ने उस हीरा को उतना तराशा, क्या तराशना था, वो तराशा हुआ ही था
2: जी।
1: तराशा ही हुआ था, पर फिर भी पारिवारिक परिस्थितियाँ और फिर आगे की जो परिस्थितियाँ उनको मिली उसने उनको अंदर तक तोड़ दिया था।
2: ऐसा भी कहा जाता है कि वो जो है फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ठीक नहीं थे तो उनके पिता उनको स्कूल ना ले जाकर फिल्म स्टूडियो ले जाते थे, जहाँ पर 4 साल से ही उन्होंने काम करना शुरू किया था।
1: परिवार में
2: जो है अपना योगदान देने लगी थी तभी से।
1: तो मीना कुमारी का परिवार जो था अपने आप में पारसी रंगमंच से जुड़ी हुई थी वो, और बंगाल के जो प्रतिष्ठित टैगोर परिवार था उनके पुत्र जदुनंदन टैगोर ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध, कोई हेम सुंदरी मुखर्जी थी मीना कुमारी की नानी, उससे शादी की थी। लेकिन 1862 में जदुनंदन जी का देहांत हो गया तो हेम सुंदरी को बंगाल छोड़कर मेरठ आना पड़ा, और यहाँ आके उन्होंने नर्स की नौकरी की और उर्दू पत्रकार प्यारेलाल शंकर मेरठी, जो एक ईसाई था, उससे शादी कर ली। हेम सुंदरी की 2 पुत्रियाँ हुई जिनमें एक प्रभावती और दूसरी मीना कुमारी की माँ थी। तो इन परिस्थितियों को देखने के बाद पता चलता है कि मीना कुमारी काफ़ी कठिन वक्त से, दौर से अपने जीवन में गुजरी थी। और जब इतने कठिन दौर से कोई गुजरता है तो जो दर्द, क्योंकि बहुत सेंसिटिव थी वो, जब कोई बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है तो परिस्थितियाँ उसे अंदर तक छू जाती हैं, और जब वे अंदर छूती हैं तो इसीलिए उनकी अदाकारी, उनकी कलाकारी में वो दर्द हर समय दिखाई देता था।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से झांकती मीना कुमारी केवल अपने नाम से ही नहीं, फिल्मों से जितनी प्रसिद्ध हुई और भारत के घर घर में उन्होंने प्रसिद्धि पाई। 1952 में जो फिल्म उनकी आई बैजू बावरा, मीना कुमारी के फिल्मी सफ़र को इसने एक बड़ी उड़ान दे दी। इसमें उन्होंने गौरी का किरदार निभाया और ये किरदार घर घर में इतनी प्रसिद्धि पा गया, मतलब आप सोचिए ये फिल्म 100 हफ्तों तक पर्दे पर रही और 1954 में इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला। तो 1952 में ही वे एकदम से

0: चमक में आ गई। 1953 तक मीना कुमारी की 3 फिल्में और आ गई थी, 2 बीघा जमीन, परिणीता, और आप सबको पता है परिणीता तो शरदचंद चट्टोपाध्याय का उपन्यास है, उसके आधार पर यह फिल्म हिंदी में बनाई गई थी जो आज भी बड़े प्यार से देखी जाती है। यहाँ से मीना कुमारी की पहचान एक अलग ढंग से शुरू हुई, और इसमें क्योंकि एक भारतीय महिला को दिखाया गया और जो मतलब बाल विधवा है और बाद में वो जिससे प्यार करती है वो एक ज़मींदार है, लेकिन वह जानती है कि उससे विवाह नहीं हो सकेगा, पर वह मन ही मन उसे अपना पति मानने लगती है। तो एक उस समय की नारी की आम जिंदगी की कठिनाइयाँ उसमें दिखाई गई हैं, उसमें एक अलग तरह का अभिनय है, और मीना कुमारी की जो आवाज़ का जादू है वो उस फिल्म में सर्वत्र छाया रहा। फिर से उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अब 1954 और 56 के बीच मीना कुमारी ने अनेक तरह की फिल्मों में काम किया, जैसे जहाँ चांदनी चौक, एक ही रास्ता जैसी फिल्मों में सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने बात की, और फिर अदल जहांगीर और हलाकू जैसी फिल्में तीखे किरदारों वाली थी। ऐसे 1955 की फिल्म आज़ाद दिलीप कुमार के साथ मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी, ट्रेजेडी किंग और ट्रेजेडी क्वीन के नाम से। ये दोनों इतने प्रसिद्ध थे लेकिन हास्य प्रधान फिल्म में भी दर्शकों से इनको बहुत वाहवाही मिली, और मीना कुमारी का ये जो अभिनय था वो इतना अच्छा था कि फिल्म फेयर ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए फिर से उनका नाम दिया। फिल्म आज़ाद के गाने अपलम चपलम और ना बोले ना बोले आज कितने प्यार से सुने जाते हैं ना सुमिता।
1: बिल्कुल, और ट्रेजेडी क्वीन की बात करें तो जहां शुरुआती दौर में हंसते गाते किरदार ये निभाती रही, वहीं पर एक समय ऐसा आया कि जीवन की सच्चाई को वो अपने किरदारों के जरिए दर्शाने लगी। वहीं पर राजकुमार साहब के साथ इन्होंने काफ़ी फिल्में की जो लोगों ने इनके किरदार को पसंद किया, दिलीप कुमार साहब के साथ इनके रोल्स को बहुत पसंद किया गया, राज कपूर साहब के साथ भी इन्होंने फिल्म में काम किया जैसे कि शारदा हो गया, फिर मिस मैरी ये जो फिल्म थी 1957 में आई थी जो एक कॉमेडी फिल्म थी, लोगों ने इनको भी बहुत पसंद किया, यानी कि काफ़ी फिल्मों में इन्होंने काफ़ी अलग अलग किरदारों के जरिए अपने दर्शकों का दिल हमेशा जीता है।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, ये जो शब्द था उनके लिए ट्रेजेडी क्वीन, त्रासदी की रानी, ये उनको मिला था शारदा फिल्म से और ये राज कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म थी। और इस रोल के लिए प्रसाद जी ने काफ़ी हीरोइंस को देखा था लेकिन सभी ने मना कर दिया, पर मीना कुमारी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। और इसी फिल्म में उनको पहला जो बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब उनको दिया गया। और 1958 में फिल्म सहारा के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर नामांकन मिला। और फिल्म यहूदी बिमल राय द्वारा जो बनाई गई थी, जिसमें मीना कुमारी, दिलीप कुमार, सोहराब मोदी, नज़ीर हुसैन, निगार सुल्ताना, ये सब लोग थे। और ये ऐतिहासिक फिल्म थी, रोमन साम्राज्य में यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किए गए थे, पारसी और उर्दू रंगमंच में क्लासिक आगा हाशर कश्मीरी द्वारा यहूदी की लड़की पर आधारित थी। यह फिल्म मुकेश द्वारा गाए प्रसिद्ध गीत ये मेरा दीवानापन है जो था, बहुत इसमें हिट रहा। और ऐसे फरिश्ता मुख्य नायक के रूप में अशोक कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया। फिल्म को काफ़ी सराहा गया और फिल्म सवेरा सत्येन बोस द्वारा निर्देशित की गई, जिसमें फिर से मीना कुमारी और अशोक कुमार ने अपना रोल अदा किया।
2: बिल्कुल, और आगे चलते चलते भले कम उम्र में वो चल बसे, लेकिन जितना उन्होंने काम किया

0: वो काबिले तारीफ रहा, जहाँ पर आपने 50 के दशक की बात की, वहीं 60 के दशक में आए तो काफ़ी ऐसी फिल्में की जहाँ पर फैमिली ड्रामा थी, जैसे कि भाभी की चूड़िया जैसी फिल्में, प्यार का सागर जैसी फिल्में जो लोगों ने बहुत पसंद की। और वहीं 60 के दशक की बात करें तो साहेब बीवी और गुलाम, इस फिल्म को कौन भूल सकता है,
1: और दिल अपना प्रीत पर आई, ये तो बहुत ही लोगों ने सराही।
0: बिल्कुल,
1: एक रोमांटिक ड्रामा की तरह से थी।
0: फिल्म के गाने भी कितने कमाल के थे। अभी तो एक गाना हमने ऑलरेडी चला ही दिया। अभी थोड़ी देर आप आजाद फिल्म की बात करी थी, हाँ। शायद आजाद फिल्म में ये दिलीप कुमार साहब के साथ
1: जी, जिसमें अपलम चपलम गाना, ये सुनना ही चाहिए, बहुत बढ़िया गाना है। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं इस गाने को।

0: श्रुतों, मीना कुमारी को इतनी फिल्मों के लिए बेस्ट कलाकार के रूप में पुरस्कार मिलता रहा और बस वे लगातार ऊपर की सीढ़ियां ही चढ़ती रहीं। और उनके दर्शक जो थे 1962 में साहब, बीबी और गुलाम, आज भी बड़े ही प्यार से सब लोग देखते हैं इस फिल्म को। और विमल मित्र के बंगाली उपन्यास पर यह आधारित थी, साहेब बीबी गुलाम। लेकिन फिल्म ने हिंदी जगत में बहुत ही प्रसिद्धि पाई और इस फिल्म में बड़े अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन थे। मीना कुमारी जी तो थी ही, गुरुदत्त थे, रहमान, वहीदा रहमान, नाजिर हुसैन, ये सब लोग थे। और इसमें गीत जो थे वो शकील बदायूनी के थे और गीता दत्त द्वारा गाए गए, सभी को याद है, न जाओ सैया, छुड़ा के बैया और पिया ऐसे जिया, ये सारे जो गीत थे इन्होंने फिल्म पर चार चांद लगा दिए और फिल्म ने 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे, जिसमें फिर वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी था। और इस फिल्म को 13वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बेयर के लिए नामित किया गया था। मीना कुमारी को वहाँ एक स्पेशल प्रतिनिधि के रूप में चुना गया और भेजा गया। साहब बीबी और गुलाम को ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। इसी तरह से अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, शशिकला के रूप में मीना कुमारी ने इन सब के साथ खूब काम किया और फिर से उन्हें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से फिर से उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। और मैं चुप रहूंगी, फिल्म को तो हम भुला ही नहीं सकते, यह एक हिट फिल्मों में से थी और मीना कुमारी को फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर में उसका नाम दिया गया।
1: चलिए, जहाँ पर हम मीना कुमारी जी को बतौर अभिनेत्री तो जानते ही है अलका जी, वो प्लेबैक सिंगर भी रह चुकी
0: हैं। हाँ, और शायर शायरा भी थी
1: जी। उन्होंने जो है चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जो है जब फिल्मों में काम किया था उसी समय वो गाने भी गाया करती थी। 1949 से जो है उन्होंने बहन इस फिल्म में गाने की शुरुआत की थी और वहीं पर कई फिल्मों में जो है उन्होंने प्लेबैक भी दिया है, जैसे कि दुनिया एक सराई, पिया घर आजा, बिछड़े बलम, पिंजरे का पंछी जैसी फिल्मों के लिए। और इतना भी कहा जाता है कि उन्होंने पाकिजा फिल्म में भी एक गाना गाया था। ऐसे वो गाना फिल्म में शामिल नहीं हुआ था लेकिन बाद में जो है इसे रिलीज किया गया था।
0: कुछ भी कहो, मीना कुमारी के भीतर कुछ ऐसी प्रतिभाएं थी जिसको जमाने ने सराहा लेकिन वक्त बहुत थोड़ा था उनके पास।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, जिस अदाकारा की आज हम बात कर रहे हैं, मीना कुमारी, अगर उनकी हिस्ट्री एक एक साल के हिसाब से भी देखें तो इतनी फिल्मों में उन्होंने काम किया। और जानते हैं, जब कोई अदाकारा प्रसिद्धि पाने लगती है तो सभी लोग उनके साथ काम करके खुश होते हैं। तो इसीलिए जब भी हम देखते हैं उनकी फिल्मों में बड़े बड़े प्रसिद्ध एक्टर एक्ट्रेस आ जाते हैं। तो सचमुच 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात जाने माने निर्देशक कमाल अमरोही से हुई, जो फिल्म महल की सफलता के बाद निर्माता के तौर पर अपनी फिल्म अनारकली के लिए नायिका ढूंढ रहे थे। और उन्होंने मीना कुमारी से बात की और मीना कुमारी इसके लिए राजी भी हो गई। दुर्भाग्यवश 21 मई 1951 को मीना कुमारी महाबलेश्वरम के पास एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे उनके बाएं हाथ की छोटी अंगुली सदा के लिए मुड़ गई। मीना अगले 2 माह के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती रहीं। दुर्घटना के दूसरे ही दिन कमाल अमरोही वहां पहुंचे और मीना कुमारी काफ़ी दुखी थी और उन्होंने कहा कि वह अनारकली में काम नहीं कर सकती। तब कमाल अमरोही ने कहा कि भाई कैसे होगा, तो मीना के पूछने पर उन्होंने कहा, अनारकली के आगे मेरी लिख डाला। इस तरह कमाल मीना से मिलते रहे और दोनों के प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। लेकिन ये प्रेम संबंध बहुत सुखद नहीं थे, क्यों?
2: बिल्कुल, बहुत ही, जैसे कि उनका बचपन काफ़ी जो है परेशानियों से घिरा रहा,
1: हाँ,
2: वैसे ही उनका बड़े होते थे। मतलब फिल्मी सफ़र भी उतना आसान नहीं था, शायद वो बचपन से ही काम करते आ रही थी तो वो प्यार अपनापन उसे अपने परिवार से नहीं मिला और वो शायद बड़े होकर वो ढूंढ रही थी, लेकिन शायद
1: वहाँ भी कुछ दुखी था,
2: इसलिए वो ट्रेजेडी जो है उनकी एक्टिंग में भी जो झलकती है वो कहीं ना कहीं उनके अपने ही जीवन की जो है एक छवि
1: है कि वो अंदर कहीं दर्द छुपा हुआ था उनका,
2: और इसी दर्द को उन्होंने शराब के पीछे छुपाने की कोशिश की और आगे चलकर,
1: लेकिन वो छुपता नहीं है, शराब से कहाँ छुपता है, जीवन ही जैसे बस उनका खत्म हो रहा था।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से जब मीना कुमारी के दर्द को खंगालने की कोशिश की जाती है तो सचमुच वो पारिवारिक परिस्थितियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक और तो पिता पीछे पड़े हुए थे कि भाई लड़की है और वे चाहते थे पैसा कमाए, और दूसरी ओर कमाल अमरोही जिनसे वो प्यार करने लगी थी वह उनके पीछे जासूस छोड़े रहता था। शाम को इतने बजे तक आपको अपनी कार में आ जाना चाहिए, आपका मेकअप आर्टिस्ट आपका पर्सनल होना चाहिए, उस कमरे में कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। इस तरह की बंदिशें उनको लगातार तोड़ रही थी। आप सोचिए, एक तो वो ज़माना ऐसा, फिर वो ऐसे परिवार से जहाँ गरीबी और पैसे की भूख, और पति ऐसे कि हर समय शक की निगाह से देखने वाले। तो अंदर ही अंदर टूटती मीना कुमारी, जहाँ एक और बेहतरीन अदाकारा और कलाकार बन रही थी, वहीं वे जीवन की अंतिम यात्रा की ओर भी आगे बढ़ने लगी थी।

0: बिल्कुल, जहाँ पर एक पॉपुलर एक्ट्रेस होकर उन्होंने इतना जो है एक ये सेट किया ना कि लोग कितने इंस्पायर हुए, वहीं पर उनका निजी जीवन दुर्भाग्यवश बहुत छोटा रहा और शराब की लत की वजह से कई अन्य बीमारियों का शिकार भी होने लगी और 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में वो चल बसी।
1: और यहाँ तक कि सोहराब मोदी ने एक दिन कहा कि यह प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी हैं और ये इनके पति कमाल अमरोही हैं। बधाई देने से पहले कमाल अमरोही ने कहा, नहीं नहीं, मैं कमाल अमरोही हूँ और यह मेरी पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी है। तो वो जो पुरुष ईगो थी वो इतनी ज़्यादा थी कमाल अमरोही में कि वो मीना कुमारी की प्रगति और बढ़त को सह नहीं पा रहे थे।
0: और उनकी बात करें तो उनकी जीवन उनका जीवन ऐसा रहा कि जहाँ सफलता तो थी ही, साथ ही दर्द दोनों जो है इन्होंने अपने जीवन में देखा। लेकिन आज भी जब मीना कुमारी जी का नाम लिया जाता है तो फिल्मों में उतने ही शान से और उतने ही गर्व से लिया जाता
1: है। और कमाल अमरोही न केवल मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित कर रहे थे, यहाँ तक कि शारीरिक प्रताड़ना भी थी, कभी हाथ भी उठा लेते। तो आप सोचिए, इतनी ऊपर बढ़ने वाली कलाकार, कभी उसकी आंखें सूजी होती थी, लगता था पूरी रात रोई है या वो सोई नहीं है। उनकी फिल्मों में भी, जैसे पिंजरे के पंछी, मैं चुप रहूंगी, इन फिल्मों में वह सब कुछ झलक दिखाई देती है। तो सचमुच हिंदी जगत को या हिंदी बॉलीवुड को फिल्म जगत की ट्रेजेडी क्वीन मिल तो गई, लेकिन सचमुच उसके जीवन में बहुत ट्रेजेडीज थी। तो श्रोताओं, भगवान इतना अच्छा कलाकार तो किसी को बनाए, लेकिन इतने दुखों के साथ नहीं, बस यही हम कह सकते हैं।
0: तो बस आज के लिए बस इतना ही, और इस आखिरी गाने के साथ जो है हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। 3 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो है, जो सवेरे रेडियो मॉरिशस पर चला था, उसे आप दोबारा सुन पाएंगे। तो अगले सप्ताह हम आपसे दोबारा मिलेंगे अलका जी, क्यों?
1: बिल्कुल ठीक, तो चलते हैं।
0: नमस्कार,
1: शुभ संध्या।

0: सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ आपको नमस्कार विधिमा।
1: नमस्कार हंसनी, सभी को नमस्कार। आज सुबह पोर्टली स्थित सन ट्रस्ट बिल्डिंग में एमएसएम ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया। जुलेश ऑगर ने राजनीतिक घटनाक्रम

0: पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लक में हुई हालिया जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति और वेरोनिका लोगोविन का इस्तीफा शामिल था। आज सुबह एबेन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पॉल बेरांजे ने विपक्ष के नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोआना बेरांजे को विपक्ष की व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फॉर्म मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। और विदेश में भारत में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। दिल्ली गुरुग्राम में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी और बिहार सहित 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे हम सबका कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। आज हमने बतियाब जा इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर ये जो अगस्त के पहला महीना चलेला पहला से 8 अगस्त तक ई में माँ लोग के अपन शिशु अपन बेबे के दूध पियावे पर एगो सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलावल जाला। आज मॉरिशस में जैसे जानेला जोन हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय बा ओकर द्वारा ई जोन पूरा सेंसिटाइजेशन कैंपेन जागरूकता अभियान बा ऊ चलावल जाला। तो आज हमने देखब जा कि काहे आज के दौर में भी जहाँ पर इंटरनेट पर सब कुछ आपके मिलेला जहाँ पर टीवी रेडियो पर सब जानकारी मिलेला फिर भी ये जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन बा वो सार्थक है वो रेलेवेंट है। आज भी चाहे ना ही करे के कहे चाहे करे के काहे चाहे माँ लोग के आज भी अपन लड़का लोग के दूध पियावे के कहे कि एगो ऐसा दुनिया में जियत है जहाँ पर सब कुछ उपलब्ध बा बाजार में और काहे चाहे माँ लोग के सिखावे के कि अपन लड़का लोग के चाहे अपन बेबे के दूध पियावे के कब तक पियावे के एकर से कौन फायदा होवेला ये सब विषय पर आज हमने संगे बात करे खातिर हवन स्टूडियो में डॉक्टर राजीव बाचुनी जे कम्युनिटी फिजिशियन हवन। डॉक्टर जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम में आपके बहुत स्वागत बा। और फिर साथ में हमने संगे हवन एगो सीनियर मिडवाइफ श्रीमती सोमेरी सोनू जी। नमस्कार सोनू जी। आप दोनों के सोनी जी आप दोनों के ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आप दोनों जना अपन कीमती समय निकाल के आज फजीरे फजीरे आल हो बजा जनता के ये समझावे कि माँ के कहे चाहे अपन दूध लेका के पियावे के और ये सब जन कार्य चलता ओकर से कौन लाभ होवे होला बा कौन उद्देश्य बा ये सब विषय पर आज बात करब जा। सबसे आगे डॉक्टर साहब हमने के ये बोला ये जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन बा ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो पूरा एक सप्ताह तक चले के एकर मकसद है दुनिया भर में एकर मकसद का है
1: तो एगो हिस्टोरिक लीला सा
0: जरूर
1: है। हमने जब से WHO क्रिए होल बा जिसने 1948 से तब से वो एस्टैब्लिश कर ले बा वर्ल्ड हेल्थ के वो गाइडलाइंस देवेला प्रोटोकॉल देवेला और है अवेयरनेस खातिर हमने के सुझाव देवेला तो है जो कंपनी बा ब्रेस्ट फीडिंग के वो लिदानी सुसान जिस से है और हर साल ये कंपनी आवेला और हमने के जैसे सिस्टम ला सौते में बात हमने है जो ब्रेस्ट फीडिंग के जोन बा वो ऑनगोइंग है
0: जी हाँ
1: ओके और है जो कंपनी जो एक चीज रिसर्च से बड़ी नहीं है तो हर साल एगो नवा नवा थीम रहेला
0: जी
1: तो इस साल के थीम है कि जो हमके चाहे जो चीज हमने के डेजा एग्जिस्टे बा ओकर स्ट्रेंथन करे के जैसे तू ही बोला काहे चाहना हर साल याद कराए के क्योंकि हर साल नया नया माँ लोग होलन सा
0: हाँ।
1: नया नया बच्चा शिशु

0: तो ओ लोग के हमने के कैसे आँखों पाए मन यान करीला सो तो ये गो टीम वर्क हो कि खाली जोतिया नहीं करेला इमें हमने के मिडवाइफ भी बा और सब भी जो ना कुते गायनी जीनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट में हो और हमने के पूरा साल ही चलेला खाली नहीं कि अगस्त के महीना में चलेला ये पूरा साल चलेला
1: जरूर
0: हाँ तो हमने के सब एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो
1: जी श्रीमती सुमेरी सोनू जी आप एगो मिडवाइफ हवा हमने के बोला आपके जस्ती संपर्क है जस्ती आप मिलेला माँ लोग से जो माँ बने होला स्त्री हवन जा तो ई जो कंपाइन चला था आप लोग कैसे ई सब माँ लोग के मिलेला जा मतलब कैसे चलेला ई कंपाइन
2: पहला जब माँ लोग गर्भवती हो जा तो वो लोग आवेलन जा जिस पौसे हमें अपन एगो दृश्य बनावे वो लोग के एगो बुकिंग करी ला जा जमें उमें वो लोग के सब इंफॉर्मेशन ले ला सा वो लोग के सलाह मशवरा दे ला सा और हेल्थ स्टॉक करी ला सा और वो हेल्थ स्टॉक के द्वारा हमने ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करके माँ कैसे बच्चा के दूध पिया काहे के चाहेला दूध पियावे के ब्रेस्ट फीडिंग के जितना लाभांताज रहेला ए माँ के समझाएला सा और उकर डिजावांताज भी जन हो वो भी माँ के सिखाएला जा कि लोग के दूध नहीं पिए अन सब बच्चा के तो उकर कॉन्सिक्वेंस का हुएला
1: जी और कौन महीना से मतलब जब एगो स्त्री गर्भवती हो गई लन तो कौन महीना से ये ट्रीटमेंट शुरू करे लन जा रजिस्ट्रेशन कब से करे लन जा
2: उ रजिस्ट्रेशन उ जैसे जनलक की उ प्रेग्नेंट बा ओकर एगो प्रेगनेंसी टेस्ट करल जाला जब आवेलन जा जब ओकर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहेला तब ओकर एगो दृश्य बनाएला जा सा विजय ओकर प्रोसेस जन बा उ कॉन्फर्म हो गल तो अब ओकर दृश्य बनाओ अब सा ओकर एगो फॉलोअप करब सा और वो लोग के सब जितना सलाह मशवरा रहेला देवे के तो वो लोग के सब सुविधा दे सा और वो लोग के जितना क्वेश्चन रहेला तो वो लोग हमने से सकेलन सब पूछे और सब सोल्यूशन दे जा
1: अच्छा ज़रूर तो आज जैसे देखा था हमने ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि माँ के अपन शिशु अपन चिबेबे के अपन दूध पियावे पर जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलेला अगस्त महीना के पहला सप्ताह में ऊपर बतिया थे जा और हमने संगे डॉक्टर राजीव बाचुनी हवन और साथ में हवन श्रीमती सुमेरी सोनी जी तो कार्यक्रम के अभी थोड़ा देर में और आगे बढ़ावा जा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने जो विषय पर बतिया थे जा उ माँ के दूध से लैका लोग के जो लाभ होवेला जो माँ के लाभ होवेला और ई पर एगो पूरा सप्ताह के सेंसिटाइजेशन कैंपेन चलेला अगस्त महीना में पूरा दुनिया में। और ई विषय पर बात करे खातिर आज हमने संगे हवन डॉक्टर राजीव बाचुनी कम्युनिटी फिजिशियन और श्रीमती सुमेरी सोनी जे सीनियर मिडवाइफ हवन जा। डॉक्टर साहब हमने के बोला ई जो कैंपेन चलता जो सेंसिटाइजेशन होवेला के तो लोग के ऑडियंस है मतलब के लोग से आप लोग संबोधन करेला जा खाली माँ लोग संगे जे लोग माँ बने होला बा जे लोग माँ बन गल हवन जा या फिर के कर संगे
1: तो हम के टारगेट ऑडियंस है महिला लोग जन प्लान करत हन सा प्रेगनेंसी और नया मदर जन प्रेग्नेंट हो गल हन सा पहला बार लोग के प्रेगनेंसी है और खाली वो लोग के नहीं वो लोग के पति और लोग के फ्लाफामी और लोग के क्लोज जन संगे भाव लोग जैसे रही जो लोग के एडी करी आई गोसेस के लेता हूँ मैं तो वो लोग के यानी उनके टारगेट ऑडियंस हो। तो शुरू में जैसे बोले जैसे ब्रेस्ट फीडिंग ऐप होता है तो जाना जाने के काहे ऐप होता है। ब्रेस्ट फीडिंग एक चीज़ नेचुरल है हाँ एगो प्रकृति के एगो नेचुरल एगो नेचुरल चीज़ है एगो चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है।
0: जब एगो लड़का के जन्म होवे लाता साथ में माँ के दूध भी आवे के शुरू हो जाला
1: तो जैसे आगे टेक्नोलॉजी नहीं रहा तो माँ के दूध रहा तो तब से बढ़ लिया ऐसा जब से मॉडर्नाइजेशन आलबा तो ये सब सब्स्टिट्यूट मिल्क जो आलबा वो आलबा है मौसे पर तो एगो जैसे हमने के महिला लोग काम करेलन सर तो हई से मालजमा जैसे बोला सा प्रभाव

अभाव होल बा जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग कमती होल बा तो हमने के डेनिस स्टैटिस्टिक जन करे रही सर तो मुकुशमें तनी सुन कमती बा हाई वर्ल्ड स्टैटिस्टिक में 48 à 50% हाँ ब्रेस्ट फीडिंग होला तो मुकुश में तनी कम हाँ एगो

0: सकी पहुँचे तो ठीक रही। तो ये खातिन हम जैसे बोले सर कंपाई खाली कंपाई के बखत अगस्त में नहीं काम करला सर भर भर साल ये चलेला रेनफोर्समेंट है मैसेज
1: एगो सिंबॉलिक है प्रीमियर से 8 उत्वा एगो सिंबॉलिक है
0: एगो इंटरनेशनल सब कोई सेलिब्रेट करला नहीं तो ये चीज जो जारी है भर साल तो काहे इंपोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग बस ये हमने के जैसे हमने सुन लिया अब सर पहला वैक्सीन है हमने के बेबे के पहला वैक्सीन है माँ के दूध और माँ के दूध जैसे शुरू होला सब कोई के जो पहला पहला माँ बने लन सर तो लोग कब चौंके लन सर तो वही खातिर ना ये मिडवाइफ जन बा हमने के टीम बा हमने के लेके वो लोग एक्सप्लेन करला सर पहला दूध एक कोलेस्ट्रॉम जो निकलेगा जो पहला दो तीन दिन में निकलेगा और बाद में उस हाँ से होला और 14 दिन लेगा दूसरा मिल्क आवेला तब मैच्योर मिल्क 14 दिन के बाद में एस्टाब्लिश होला तो ये सब एक्सप्लिकेशन जारी रहेला और कैसे बेबे के पियाए के तब हमने के टीम जनबा है मिडवाइफ जन हन सा और सबके जनबा जन डिपार्टमेंट में बा वो लोग एडी करे लन सा एक्सप्लिके करे लन सा और जब वो लोग के बुकिंग जब रहेला जैसे मिडवाइफ जी बोला तो वो लोग के पत्निया के वो लोग के पति के वो लोग के सास के वो लोग के माँ के जो साग नालवा वो लोग के बुलाईला सा एक्सप्लिके करे सा कौन सपोर्ट चाहना दे के और कैसे दे के जमें ये ब्रेस्ट फीडिंग हुआ ये शुरू हुई आकुष्मों के बाद और वो जारी भी रही और WHO रिकमेंड कर ले बा 6 महीना तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पानी तक भी नहीं दे के
1: खाली माँ से दूध।
0: हाँ तो देखा तो एक बहुत लंबा चौड़ा विषय है हाँ और देता है बहुत बा और हमने ये काम जारी ही रखे ला सर कि खाली नहीं आगे खाली अगस्त में कर ला सर। हाँ और मिडवाइफ
1: हमने के मिडवाइफ हमने के संगे हवन आगे मिडवाइफ के जन ओकर अनुवाद ले बता ओके दाई बदल जाला तो हमने संगे आज एगो मिडवाइफ हवन आप वही काम करत हवा जन आगे के समय में दाई माँ करत रहलन जब एगो लड़का के जन्म हुआ था लड़का के कैसे दूध पियावे के ओकर से अक्ते जब लड़का के जन्म हुई होला बात माँ के सिखावे के कौन चीज चाहिए करे के ताकि दूध उतरी और जब लड़का हो गल तन जे दूध नहीं उतरता तब का चाहिए करे के कौन चीज करब तो दूध अले जाए थोड़ा हमने के बतावा माँ लोग के कौन संदेश देवे ला जा कैसे सिखावे ला जा।
2: हाँ तो हमने जब बुकिंग में आवे रंजा अपन दृश्य बनावे तो उन लोग के यही उन लोग के हेल्थ स्टॉक में यही बताई ला जा कि उन लोग के चाहेला अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखे के एगो एगो वेल बैलेंस डाइट लेवे के जमें उन लोग के ला सौते अच्छा रहे और बच्चा के दूध मिली उन लोग के चाहे अपन पानी पिए के अपन वेल बैलेंस डाइट लेवे के जमें बच्चा के खूब दूध मिली उन लोग के ला सौते अच्छा रही तब बच्चा भी स्वस्थ से रही
1: और जो खयन से पियन सा ओकर जो लिफे बा उ सीधा रूप से उन लोग के दूध में जाए और वही दूध लड़का पी तो जो खयन से पियन सा उस दूध में झिगक जाए और लड़का के वही ग्रहण करे के समय आए और जब एगो माँ के जब दूध नहीं उतरेला ओके कठिनाई हुआ था तो आप लोग कैसे उन लोग के सहायता करेला जा
2: उन लोग के जब कठिनाई हुआ तो उन लोग के प्रेनाटाल क्लिनिक में उन लोग के सब सिखा दे ला जा जब बच्चा जन्म लेवेला तो जैसे बच्चा जन्म ले लेवेला तो ओके डायरेक्टली ओके माँ के छाती पर लगाएला सा जब मैं बच्चा दूध
1: खोजी
2: और ओके स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बोलल जाला माँ और बच्चा के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जगह पो आ पो बोलल जाला
1: जैसे जन्म हो
2: हाँ जैसे जन्म हुई था तब बच्चा दूध हिंची माँ से और ऐसे बच्चा और माँ में लगाव भी हुई ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ लेबर वार्ड में वो लोग एक घंटा विद इन 1 आवर एक गोल्डन आवर बोलल जाला ओके पुष्नाताल में ट्रांसफर करे से पहले ओके वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करेला सा तो वहाँ पर लैक्स को भी असेस करेला सा कैसे कि बच्चा कैसे दूध हिंचाता माँ के कौन पोजिशन चाहेला अडॉप्ट करे के कैसे वो कम्फर्टेबल से

0: थी और बच्चा भी कोफोताब से रहे और देखे के चाहला कि बच्चा के दूध मिला था और माँ के दर्द भी नहीं महसूस हुई।
1: ज़रूर। और डॉक्टर साहब ये जो सीख देवत हुआ जा अभी बोल रहा पूसौदास थोड़ा बेसे हो गल बा तो जो जो सीख देवत हुआ जा जो कौसे देवेला जा जो कंपाएँ करेला जा एकर से कोनो असर सामने नजर आवता मतलब कितना एफिकास बा कितना फायदेमंद बा।
2: जैसे हमने बोला था ऐसा कि फैसिलिटी आप सब कोई खोजेला से हमने खोजा सा ऑफोसे करे के
1: है जरूर
2: है जो लीडे बा लीडे नहीं है मतलब एगो फैक्ट है कि पहला बच्चा जब माँ संगे दूध पिएला तब देखल गल बा स्टैटिस्टिक वाइज ओकर मलाद लड़का नहीं रही मतलब पहला जैसे दूध पीलक ओकर माँ से ओकर पहला वैक्सीन से बोलन सा कोलेस्ट्रॉम में उमे ऑंचिको बा उमे विटामिन बा फे मैग्नीशियम एलएमएस जोन बा वाइटल जोन ओकरा चाहेला और बच्चा जब पैदा होला तो ओकर पेट बहुत छोटा रहेला तो उसमें ढेर उकरा नहीं चाहला तो 5 ml ले रहेला ओकर पेट तब जैसे जैसे बढ़ेला दिन तो ओकर पेट खुली जब कोलेस्ट्रॉम डिसान होला तो ओकर गट के खोलेला ओके तब ओकरा कोटिंग होला और तब जैसे बोली तीसरा दिन के बाद में दूध के ओकर कंसिस्टेंस सांस होला और 14 दिन पर वो माचो मिल्क आवेला। जब हई भय रहेला कि महिला लोग के कि बस नहीं बा दूध ये खाली एगो साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है। जब जैसे बच्चा पैदा होला जैसे प्लासेंटा निकलल तो ओकर हार्मोन के कास्केड जो हार्मोन बा वो सांजे हो जाला तो ऑटोमेटिक में ओकर लिको लगी पोजिया करे और लड़का के ओकर स्तन के पास लावन से ओकरा स्टिमुलेट कर लेना से एगो टेक्निक है सिखावेला सर मैडम लोग के मिडवाइफ लोग के टीम सिखावेलन सर कैसे लड़का के डाले के जब ऑटोमेटिक में ओकर रिफ्लेक्स आवेला खींचे के
1: जी।
2: और वो जैसे रिफ्लेक्स डाल खींचे के तो दूध देसान हो जाला
1: जी।
2: तो ये एगो बड़ा समस्या नहीं है। जैसे बोलिए आगे की WHO बोले बाकी 6 महीना तक छना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो ये सब जब करब तो जैसे पहला वैक्सीन हो लड़का के ओकर आसमाचिक के प्रॉब्लम कमती हुई ओकर कान के ओकर पेट के बीमारी जैसे पेट झरेला लड़का के छोटा के वो लोग बहुत कमती होला वो लोग के प्रोटेक्शन होला लंग्स के चेस्ट इन्फेक्शन से और लोग के लोकल भी जो ब्रेस्ट फीडिंग कर लेना सर कि बाद में वो लोग के Type 1 diabetic से कम रिस्क है अगर ओबिजिटी नहीं रहेला तो ये सब बहुत लाभताज है जब बेबे ब्रेस्ट फीड होला जब माँ के साथ दूध यहाँ में खाली माँ के लैपोटॉस मतलब लैपोटॉस ने खाली पियावेला
1: जी
2: बच्चा के ओकर लाभताज बा माँ के भी लाभताज बा देखल गल बा जो महिलाएं जो बच्चे के दूध देवे लंस तो लोग के रिस्क ऑफ कैंसर ब्रेस्ट और ओवेरियन बहुत कम है
1: जी।
2: तो ये स्टैटिस्टिक वाइज ये सब चीज़ है और जब एगो माँ और बच्चा साथ में रहे लंस तो लोग के इमोशनल बॉन्डिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग और ये सब यदि करेला जब लोग का मेंटल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल मेकअप दूसरे को फास हो गई।
1: अब डॉक्टर साहब एक दूसर बात है कि ढेर ऐसा का है जहाँ पर लड़का के जन्म से अगते कहे कि मिडवाइफ लोग आप लोग सिखावे ला जा माँ लोग के तैयार करे ला जा ताकि जब लड़का के जन्म हुआ था तो दूध अपने आप अच्छा से उतरी और ऐसा बहुत का है जहाँ पर ढेर दूध उतरा था लड़का नहीं पिया था तो ऐसा में कैसे मतलब इस सिचुएशन के कैसे चाहिए हैंडल करेंगे।
2: जैसे शुरू में बोली हैं रिकमेंडेड है 6 महीना में खाली ब्रेस्ट फीडिंग तो अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करत हो तो जितना लड़का के चाहे उतना फौजी होला माँ के दूध और दिन में 8 से 12 बार बच्चा पी बच्चा दूध पी और ओकर पिए जैसे पिएला ओकर कंसिस्टेंस ओकर क्वालिटी सौंझे होला शुरू में ओकर दूध दूसर फासों है एगो जस्ती लिक्विड है बाद में ओकर घा होला ओकर प्रोटीन होला ओकर जितना ओकर पौष्टिक चीज चाहेला वो ऑटोमेटिक रहला तो कोनो कोनो माताएँ हैं जो नवा नहीं जाने लन सर तो थोड़ा सुन एगो कोते दियन सर अपन स्थान में और तब दूसर थोड़ा सुनो तो वो नहीं है चाहे एक के कोते और के अच्छा पिए देके नीमन से हिंची तो नीमन से ओकर पेट भरी तब जब सौंझे करबा तब दूसर का आते नहीं तो खाली ओकर ऊपरे ऊपरे सुपरफिशियल मिल्क जैसे बताएंगे सौंझे होना तो ये है एगो बात और पूछला कि
1: जब ढेर दूध उतरता
2: ढेर उतरता
1: एक्सक्लूसिव
2: देवा तो ढेर नहीं उतरी अगर उतरा तो एक्सेस प्रोजेक्शन हुआ तो आजकल डिवाइसेस

0: ब्रेस्ट पंप बा जो महिला लोग सकना सेवी करे और सकबा फ्रिजदे में डाले एक रख देव और अगर काम करे वाला महिला हो तो आगे से निकाल के डाल दे फ्रिजदे में और वक्त दे
1: बिभों से सकी पिया वे।
0: हाँ लेकिन शुरू में बिभों नहीं आंखों खास कर देगा क्योंकि बिभों लड़का के पागज करा देगा
1: और
0: बिभों देव जाने ला माँ के स्थान एगो जस्ती फासिल और इजैन रखे के
1: जी।
0: हाँ तो जब बिभों में डाले तब पर बिभों साफ रखे के निप्पल हई हाउ तब बहुत कॉम्प्लिकेशन होला जेकर नहीं सकत वन सा होला में जब तक और भर सक जितना सकी
1: डायरेक्टली अपने पिया
0: डायरेक्टली ब्रेस्ट
1: जी। तो जैसे सुनत हवा देखत हवा आज के हमने के प्रोग्राम बा माँ के दूध के जो लैपोटॉन्स है और ई काहे सुविधाजनक और लाभदायक है लड़का खातिर भी और माँ खातिर भी और इस सब विषय पर हमने संगे बात करा था डॉक्टर राजीव बाचुनी और सीनियर मिडवाइफ श्रीमती सुमेरी सोनी जी। थोड़ा घड़ी में आपसे फिर मिलब जा और इस विषय पर और बातचीत करब जा। फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने माँ लोग के कैसे चाहे अपन लड़का के दूध पियावे के, काहे चाहे पियावे के, लड़का के काहे चाहे दूध पिए के, ई विषय पर बात कर रहे थे जा। हमने संगे उपस्थित हवन स्टूडियो में कम्युनिटी फिजिशियन डॉक्टर राजीव बाचोनी जी और साथ में सीनियर मिडवाइफ सुमेरी सोनी जी। सोनी जी, हमने के ई बोला कि आप लोग मिडवाइफ के हैसियत से कैसे माँ लोग के आँखों पाए करे ला जा, कैसे कौन कौन टिप्स देवे ला जा, लेगा के कैसे प्याए के, कौन बखत प्याए के, थोड़ा हमने के इस टिप्स के बारे में बोला और आप लोग कैसे सहायता करे ला जा।
2: हमने मिडवाइफ लोग हमने माँ लोग के उन लोग के साथी हैं सा, उन लोग के आँखों पाए करे ला सा, अगर बच्चा के जन्म से पहले और बच्चा के 2 साल हो जाला तब लेक हमने वो लोग के एगो स्वीवी भी दे ला जा। और बच्चा के तुरंत बाद जैसे बोलनी ओके माँ के चाहेला अपन दूध देवे के, ओकर पहला दूध जौन है ओके कोलेस्ट्रॉम बोली ला सा, जैसे डॉक्टर साहब बोल दिलन कि ओकर पहला वैक्सीन है, तो ओकर इम्पोर्टेंस के बारे में भी ओके जानकारी दे ला जा कि वो कुलेर जोन रहेला माँ के ऊ पहला दूध ओके ओके ओके फेकल नहीं जाला,
1: गास्पिए नहीं
2: चाहेला गास्पिए करे के, वो पहला दूधवा बच्चा के चाहेला देवे के, ये बहुत ज़रूरी है। वो ही बच्चा के प्रोटेजे करेला इन्फेक्शन से, अलग अलग बीमारी से प्रोटेजे करेला,
1: लड़का लोग के माँ लोग के सिखावे ला जा।
2: हाँ, माँ लोग के सिखाई ला जा और साथ साथ उकर घर के जौन सदस्य बा, दादी नानी पति जौन बा, सबको के जानकारी दे ला जा, बस कि वो लोग के गलत फहमी में रह लन जा कि वो एगो जिले साल हाँ ओके नहीं देवे के चाहेला, बच्चा के नहीं देवे के चाहेला, लेकिन ये गलत फहमी हमने दूर करी ला जा कि ये बच्चा के चाहेला देवे के
1: सबसे ज़रूरी है,
2: बहुत ज़रूरी है ये बच्चा के देवे के। और माँ लोग के जब समस्या हुएला, बच्चा के कठिनाई हुएला बच्चा के दूध देवे के, तो उन लोग के हमने सिखाई ला जा, उन लोग के सब जितना केशों रहेला उन लोग के सब रिपोर्ट करी ला जा कि वो लोग के कैसे चाहेला अपन लड़का के एगो निमन पोजिशन में ओके कैसे कैसे कौन पोजिशन अडोप्टे करे के,
1: कौन पोजिशन चाहिए अडोप्टे करे के, जे अभी हमने के सुना था वंजा वो लोग के तो का बोलबा।
2: हाँ, ढेर पोजिशन बा, कैसे एगो माँ आकुशमा नॉर्मल से गुजरल बा, तो उसे कि बैठ के सकी वो अपन लड़का के एगो एगो सोफा पर, उसे कि लड़का के होल्ड करे अपन हाथ से बच्चा के कपार जौन बा, उसे कि अपन अपन लिभा में एगो सिपो देवे, और बच्चा के जेपुल जौन बा वो भी चाहला सुतेनिया करे के, और बच्चा के मुँह चाहला खुलल रहे के, बच्चा के मुँह खुलल रहे तब वो जौन हाउ माँ

0: कि आगयोला जोन है तो वो बच्चा पूरा मुँह में डाली और बच्चा के मौतों जोन है वो चाहे लामा के छाती से लगे के और
1: अगर नाक चाहे खुला रहेगी
0: अगर नाक हाँ जब मैं बाबा से कि रेस्पिरे करे तूफे नहीं हुई ये सब सिखाए ला जा और माँ के चाहे ला बच्चा के अपन दूध पियावे के बच्चा के मांग पर और जब बच्चा के माँ बच्चा के दूध पियाए तो ओके कोनो प्रकार के दुले उन्हें महसूस करी
1: और कई मतलब कुल नया त्यौहार में कई हला एगो माँ के चाहे प्याय के अब रात के जब दूर जना सुतल हवन जा थक के सुतु माँ तक रात में कई हला चाहे लेगा के पियावे के चाहे उठा के प्याय के
0: बच्चा के घर ही देख के नहीं दूध देवल जला बच्चा के मांग पर चाहेला ओके नहीं बोला जला कि 2 घंटा 3 घंटा पर बच्चा के दूध पियावे के वो बच्चा जो सुतल रही तो ओके उठा के चाहेला ओके दूध पियावे के और देखबा बच्चा रोवता बच्चा दूध खोजता गोदी में लेबा तो वो देखबा बच्चा दूध खोजता तो ओके चाहेला घड़ी घड़ी जब मांग करियन तो ओके माँ के चहला ओके दूध पियाई के
1: अच्छा डॉक्टर साहब अभी आप लाभ और जो लाभ हुआ था माँ के पहला दूध से ओकर बारे में बोला था एगो माँ कब ले सकी अपन लेका के कब ले ओके चाही पियावे के ऐसा ढेर काबा मतलब आगे रहा अभी तक नवा समय बदल ले जाता जहाँ माँ लोग 3 बरिस तक पियते रहे लंजा लड़का लोग दूध नहीं छोड़े लंजा त कब ले सकी एगो माँ अपन लड़का के दूध पियावे और अभी जो नवा समय चलाल बा नवा नवा फासों नवा नवा भोजवी नवा नवा उपस्यों दूध से लेके अलग अलग जो सुप्लीमों बा लड़का खातिर आज बा नवजात लड़का लोग खातिर भी बा तो एक बार थोड़ा काबुल बा
2: तो जैसे बड़ी साहब के WHO के रिकमेंडेशन हो 6 महीना तक सिर्फ माँ के दूध तब 6 महीना बाद में वो लोग के थोड़ा सुन सेमी सॉलिड दे ला सा और एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग 2 बरिस ले रिकमेंड है WHO
1: 2 बरिस के बाद नहीं
2: ये नहीं हाँ कि एगो सख्त चीज़ है कि रोके देखे
1: इसमें फ़ायदा नहीं हुई
2: नहीं वो जाने ला जैसे बोली शुरू में एगो इमोशनल बॉन्डिंग होला लड़का से तो कोनो कोनो लड़का 2 बरिस से ऊपर भी पिएला लगभग जो जैसे माँ लोग जो काम करे लन सा और बच्चा के जाला खैश में तो वो छूट डाला हाँ। तो वो हो जाला जो माँ जो घरे रहे लन सा वो लोग तनी जस्ती लेता पियावे लन सा तो इमें में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जब तक लड़का बढ़ाता खाता पियता खेलता कूदता तो ठीक बा तो सीमा जब उ लेको लाइके बखत तो देखबा तू अपने से ओकर छूट जाए ढेर नहीं पड़ी जेफो करके सकेला एंड फॉल इतना खोजी तो गति गति ओकर जैसे बढ़ी ओकर संगतिया आए लड़का लोग हमेशा खेले के कूदे के जब लगी मोबाइल हो तो जस्ती थोड़ा थोड़ा देता से हो जाए वो अपने से आगे कर दे
1: खोजबो करी तो रात के खोजी
2: हाँ वो तो एंड फॉल इतना खोजी हाँ। और जैसे ओकर सॉलिड फूड ओकर दांत निकली ओकर खाए के तरीका तौर भी उसे हो तो वो नहीं छना उतना ढेर अगर पिया था बच्चा तो पिए दही हम के सलाह
1: जी हाँ और जो माँ लोग सोचत हवन जा कि उ लोग के कामकाजी हवन जा उ लोग के चाहे वायाजे हो के कॉफी हाउस में जाए के वर्कशॉप में जाए के तो ई वजह से ढेर माँ लोग सोचलन सा कि लड़का के जो दूध पियब ई जो हमने बोल थे जा कि ई जो संबंध वाला तश्मा बा बॉन्डिंग बा उ बढ़ेला ढेर कोई नई खुशी बा कि ई बॉन्डिंग ढेर बढ़ी काहे कि लड़का ढेर रोवी उ लोग के खोजी लड़का उ लोग के अनुपस्थिति में उ लोग के दुख हुई तो ई मान लो कि आप का सलाह देबा ऐसी स्थिति
2: ऐसी कोनो खास चीज नहीं है जरा जाए के बा काम करेंगे क्योंकि हमने के लेजिस्लेशन बा खाली 16 हफ्ता तक हमने के ब्रेस्ट फीडिंग मदर के ओकर लीव विदाउट मतलब पियाँ हाँ ओकर कौन से
1: हाँ
2: अभी सरकार काम करता है लेजिस्लेशन पर कि ओकर बढ़ाइन सा 6 महीना तक और ऊपर अभी तक होता
1: मतलब 6 महीना तक एगो माँ के इजाजत रही
2: हाँ
1: काम में से अकते निकल के जाके अपन लेगा के दूध पियावे के
2: नहीं सकी अपन कौन से ले मैटरनिटी
1: अच्छा जी
2: हाँ
1: 6 महीना पूरा लेका संगे रही
2: हाँ तो अभी फिनालिजी नहीं होलबा ई पर चर्चा होता है पर काम होता तब फाइनल हम नहीं जाना थे कैसे हो पर अभी तक 16 वीक्स आती बा तो ओकर बाद में जैसे लेजिस्लेशन डिजा बा ऑन फोर्स छला करे के कि जहाँ जब जाए काम करे तो सी एगो मदर्स कॉर्नर रही जहाँ बच्चा के सके आने और माँ सकी बच्चा के दूध पियाए तो ऊपर भी काम होता नहीं तो जन लापटीपो जैसे होला आजकल तो माँ घर पर अपन ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर देवेला तो फ्रिजदे में डाल और जन घरे जन माँ जन बच्चा के ख्याल रखता तो दूध पिया देवता तो यूजली जन तो लोग नानी या दादी होला नहीं तो स्पेशलाइज जैसे मतलब खैश पीबा वहाँ भी के ख्याल रहेला जैसे बोला सब्स्टिट्यूट ढेर कालते बा से जैसे शुरू में बोली नहीं सकबा हम प्लास्टिक करे आई दूध के ओकर महत्व एगो नेचुरल चीज है और माँ और बेबे के बीच में एगो संबंध है तो जैसे बढ़ी लैका तो वो दूसर खाना पर भी जाए लेकिन जब जैसे दूध मांगी और कमती लगी मांगे और ढेर कोई महिला के सोचलन सा कि नहीं हमारे दूध बस नहीं हुई तो ये लोग एगो एगो इनिचियल एगो भय डाल
1: एगो गलतफहमी है
2: गलतफहमी है जितना बच्चा पी ही उतना दूध हुई
1: जरूर
2: बच्चा लगी कमती पिए दूध अपन गति गति अपने से सूख जाए इसी वजह से।
1: और सुमेरी जी आप ई माँ लोग के काबुल बा जो माँ लोग अपन लेका के दूध अच्छा समझे लंजा पियावे के लेकिन लोग में ई भी एगो डर रहेला कि ढेर लातास्मा हो जाए लैका से तो लैका सकी दिक करे लैका रोवी तो उलोगे नहीं सके छोड़ छाड़ के इधर उधर जाए ऐसा मान लो कि आप का बोल बा जो पहला छः महीना बा जेकर अभी चर्चा कर लन डॉक्टर साहब का ई चाहिए मान लो के थोड़ा जस्ती लैका लोग पर ध्यान देवे के सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा जस्ती लैका पर छः महीना ध्यान दा फिर अपन काम के बारे में सोचे आप का बोल बा मान लो के जे आप तो रोज मान लो संगे मिले ला बात करे ला
0: हाँ हमने मालूम के बोली ना जा कि कैसे WHO रिकमेंड करेला कि 6 महीना तक चाहेला सिर्फ माँ के दूध देवे के बच्चा के ओके कोनो प्रकार के पानी जी कुछ नहीं चाहेला देवे के काहे खातिन कि ई दूधवा में सब विटामिन जोन बच्चा के
1: चाहेला
0: बड़ा हो के तो ई में सब कुछ बा तो ओकर ले इम्पोर्टेंस उ लोग के बतावी ला जा कि चाहेला है दूधवा देवे के आर 6 महीना तक कैसे डॉक्टर जी बोलन कि लोग के ई सुविधा मिलेला लोग के मैटरनिटी लीव मिलेला तो ई लीव वा हाँ वो बच्चा के संगे रही जमें माँ और बच्चा में प्यार और लगाव बढ़ी कहे कि जब स्तनपान करे बा ब्रेस्ट फीडिंग तो उसे माँ और बच्चा में प्रेम और लगाव बढ़ेला और ये प्रेम और लगाव ये बच्चा छोटा रहेला तब नहीं जिंदगी भर वो प्यार वो लगाव वो लातश्मा रहेला ऐसे बच्चा लोग जब 12 होवेलन से तो वो लोग एगो समय द्वात में जालन से माँ के बात सुनियन से और
1: माँ के जो संस्कार ट्रांसमिट
0: हो जाए
1: अच्छा से
0: और ये सब जितना लावांताज है वो हमने तो सिखा दे ला जा और
1: आप यही सलाह देबा कि माँ लोग के चाहे थोड़ा जस्ती ध्यान देवे के लैका के जब जन्म दिला तो जो 6 पहला महीना बा आप जस्ती अपन लैका के ध्यान दा एगो पूरा ओकर जीवन बा ओकर सामने बाद में सकबा अपन काम काज में बाद जस्ती जोर देवे लेकिन जब 9 महीना तक ई कष्ट सहला अपन गर्भ में एगो लैका के रखे के तो और 6 महीना तक ओके पूरा ध्यान देवे में नहीं चाहिए हिचकिचाई के
0: हाँ ओके चाहेला अपन पूरा समय निकाल के बच्चा के साथ में रह के और ई में चाहेला जन घर के अलग परिवार जन बा चाहेला माँ के मदद करे के काम काज सब में कैसे ओकर पति जन होवन उ सकियन बाबा के नापी सौजे करे जितना सदस्य बा ओकर हौसला बढ़ाई कि वो बच्चा के अपन दूध पियाए ओके लेता दे के जब ओके रेपो मिली
1: हाँ जब 6 महीना में खाली होके नहीं परी फचगे हो गए बल्कि सब कोई सहयोग दे और वो अच्छा समय बिताए बहुत ही सुंदर समय बिताए अपन बेबी संगे
0: हाँ ओके हाँ जब वो लोग सब सदस्य लोग ओकर हौसला बढ़ाए तो ओकरो लोकोराजमो मिली कि वो प्यार से बच्चा के देखभाल करिए
1: जरूर और कार्यक्रम के अंत तक लगभग हमें आवत है जा डॉक्टर साहब आप का बोलबा कि अभी जो विषय पर श्रीमती सुमेरी जी बोलन कि

0: रहेला लड़का के एगो अंका लड़का के माँ के बीच है एगो अंकाद्रमा जब माँ लोग जन्म देवे लंजा तो एगो सैंतोम है एगो फिनोमेन है बेबी ब्लूज ढेर माँ लोग साइकोलॉजिकल समस्या से गुजरे लंजा अभी जन्म देला एगो जीवन के बहुत बड़ा एगो पड़ाव है ओकर बाद माँ के खुद परेला अपन के संभाले के अपन इमोशंस अपन भावना अपन साइकोलॉजी पर ध्यान देवे के साथ में एगो नवा लड़का जब आलबा पहला हला एगो नवा माँ के गोदी में तो सब ओकर दुनिया ही बदल जला सब कुछ बदल जला ऐसा में माँ लोग के अकाद्रमा पर आपका बोलबा
1: जैसे हमने के मिडवाइफ जी बोलन हमने के एगो टीम हो तो हर हमेशा जब आवेलन गर्भवती माँ तो लोग के एडवाइस मिलेला और कहे बोल लोग के पौतने लोग के पति नानी दादी के आगे संगे जब ये सब एक्सप्लिकेशन से कब से दे जब जैसे बताई बेबी ब्लूज वो लोग भी समझ जाए कि एगो बहुत एगो कैसे बोलना से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होला है देह में जब वो लोग के हॉर्मोन सॉन्स होता और जब बेबी फेक नहीं होलवा तो हाई हॉर्मोनल चेंजेस से वो लोग के कबो कबो हाई बेबी ब्लूज वगैरह हो तो खातिर अकादमा कैसे चना रहे के कि ओकर ख्याल रखिया ओकरा लिबियते द बेबे के खाली पियाए के जैसे ओकरा सफा करे के सौंझे करे के तो पति
0: सहायता कर द
1: हाँ पति सहायता कर दे ओकर जैसे बोलन सब बाद में जब बोलो चाहे ओकर गाज निकाल के जैसे थपथपावे लो सोरा तो ओ ले ली हो सौंझवा ओकर जैसे बा खाए पकाए के छा देखे के कि कोई बखत में खाए पकाए के कर दे नहीं कि बेबे भी देखी
0: जाए के भी पकाए
1: घर के भी देखी लुगा वो सब समझा तो ऐसे ना तो चाहे सब ऑर्गेनाइजे कर देखे तो इखान बुलाई ला सा एगो माजे एगो टीम नियन एक्सप्लिके कर ला सा कौन छाना करेगे और एगो अलग से बात है कि अगर जैन हो तो बच्चा देखे के थोड़ा पाशांस दस्ती बा जैसे जैसे तोहर लाश बढ़ल तो पाशांस कमती होगा ये देखल बा हमने के एक मजा ऑब्जर्व कर लिया सर तो
0: वही खातिर
1: हमने के हो साइकोलॉजिकल मतलब माँ के हमने कैसे अंकुकाजे कर लिया सा कि चाहे ला बेबे के और पूरा लातों से देखे हाई 3 से 6 महीना तक पूरा जितना सके अगर काम करे के जंजाला तो वो एक दूसरा कैटेगरी में आवेला नहीं अगर घर के जन में रहेला माँ तो पूरा 6 महीना खाली ब्रेस्ट फीड करेगी
0: हम ये सुन ले है कि माँ जितना जवान रहेला ओकर में ममता के कमी रहेला जितना उम्र होला रहेला तो ओकर में ममता जस्ती है वो लड़का पर जस्ती ध्यान देवेला एकर पर का बोलब
1: ई हमने के नहीं हमरा पेशेंट वाले ने बुझाल बा क्योंकि जब एक एक जना सुहाजिया करता एगो एगो एगो एगो जवान माँ सुहाजिया करता माँ बने के तो डिजा ओकर साइकोलॉजिकल में बा कि हाँ कि अब एगो नवा जीवन के दे तो ओकर में ममता ओकर आवेला एगो चीज हम नहीं सकब सा एक्सप्लिके करे माजे माते माची एगो बायोलॉजी एगो नाचुए के चीज है एगो हाँ तो वही जो है उनके फार्मी के सिपो बहुत ऐप होता है और बस कि ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ऐप होता चीज़ है पहला कॉन्टैक्ट है बच्चा के माँ से दुनिया से ब्रेस्ट फीडिंग तो ये छना बरकरार रखेंगे
0: और कार्यक्रम के समाप्ति तक अभी हम बढ़त है जा सुमेरी जी आप कौन संदेश देबा आप जे एगो मिडवाइफ हवा आपके हमेशा संपर्क रहेला नवा माँ लोग से जे लोग के अभी बेबे हो ही होला बा जे लोग के बेबे अभी अभी हो गल बा आप कौन संदेश देबा लोग के ई जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन चला था एकर कॉन्टेक्स में
2: हमने सब माँ लोग के बोलब जा कि अपन ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक और हो सके तो और ज़्यादा जारी रखे के कहे खातिर इमें सब लाभांताज बा
0: और फिर आप लोग हेल्थ सेंटर में ये सब करे ला जा आजकल क्लिनिक के समय चला बाद ढेर महिला लोग सकेला हेल्थ सेंटर नहीं जाते वन जाते खत्म खातिर वो लोग क्लिनिक जालन जा तो ऐसा माँ लोग के कहाँ पर औका धुमा मिला था डॉक्टर साहब
1: तो ये सब हमने के एक लीगल फ्रेमवर्क है कि मान जा जैसे बात सप्लीमेंट जो है वो लोग के एडवर्टीजमेंट उस सब बहरा में नहीं धुआ है और हमने के जो डॉक्टर वन सा प्रोफेशनल वन सा हमने के और जो हमने के पॉलिसी बा गवर्नमेंट पॉलिसी तो वो लागू
0: हो
1: सब अप्लीके होला कि
0: कहूँ जाए बा आपके ये सब सलाह मशवरा मिली
1: हाँ एग्जैक्ट
0: जी
1: तो ये समस्या नहीं है अभी
0: ओके मतलब जी हेल्थ केयर सेंटर नहीं जाता हुआ था थोड़ा नहीं चाहिए सोचे कि कुछ हो खाते हुआ था
1: नहीं नहीं
0: आपके मिली जहाँ जाता हुआ
1: हाँ जहाँ जाता हुआ अपन पर्सनल डॉक्टर अपन पर्सनल स्पेशलिस्ट जनबा वो अब तोहर पूरा ख्याल रखे
0: अच्छा और अभी अंतिम में आप कौन संदेश देबा नवा माँ लोग के परिवार लोग के कौन सी बोलबा
1: ब्रेस्टफीडिंग जो ना उन्हें छना को कैसे बोले के को कोविड जैसे बोले ना
0: समस्या नहीं चाहिए
1: समस्या रहे के

0: एगो समझे के कि एगो एवेज चश्मा हो, तू अपन लैका के शहद में और खुद के शहद में एवेजी करत हो। तोहर लैका के मालाजी नहीं हो, मालाज नहीं एगो स्वस्थ बच्चा हो, तोहर भी मालाजी के रिस्क कमती हो। तो हई पर्सपेक्टिव में छा देखे के और हमनी के छा हमनी के कैसे बोलन सा वंश बढ़ाई के, तो खाली एगो नहीं दो तीन चना
1: जरूर काहे नहीं। डॉक्टर साहब आज आप अइला, ई सब जानकारी देला, ई सब सलाह मशवरा देला, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको
1: श्रीमती सुमेरी जी, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों जना के बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग ई देश के, ई समाज के, ई दुनिया के नवा लड़का लोग के औकाधरे करे में लगल हो जा, आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।
0: शुभकामना,
1: नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: घर मिलाते चलिए, शाम के 4 बजे हैं।

0: 11:03 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। टीना से नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। आज पोल्ट्री स्थित सेंट्रल बिल्डिंग में एमएसएम ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया, जो लिवजोंगा ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लैग में हुई हालिया जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल था। और आज इबन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पुल बहुजे ने विपक्ष नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जुआना बहुजे को विपक्ष के व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। वर्षिस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, वर्षिस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। उसका उद्देश्य छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है। विदेश में वर्तमान समय में जापान एक गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जन्मदर लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। चिंता का विषय यह है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो अनुमान इस बात की तेज है कि साल 2060 तक जापान की कुल आबादी घटकर 10 करोड़ से भी कम रह जाएगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio. Man.

सभी सुनने वालों को संजय की ओर से नमस्कार आदाब जय मॉरिशस। श्रोताओ 6 और 9 अगस्त 1945 को 6 एंड 9 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर दो परमाणु एटॉमिक बम्स गिराए थे जिनके कारण क्षण भर में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और बहुत तबाही मची थी। इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए आज का गीत गाथा देश की के अंतर्गत हमोशस के उन मिलिट्री मोन्यूमेंट्स पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे जो आज भी देश के अनेकों जगहों पर देखने को मिलते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ गीत गाथा देश की संजय के साथ शाम के 5 बजे तक।

अमन से आसमां। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की संध्या के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स इन मॉरिशस की। श्रोताओं, मॉरिशस में फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के समय की कई पुरानी और 19वीं सदी की सैन्य जगह मौजूद हैं, जिसमें फो एडिलेड, जिसे हम सिटाडेल नाम से भी जानते हैं, मार्टिडो टावर, बेदुल आर्सेनल और पोर्टविस का ऐतिहासिक मिलिट्री हॉस्पिटल शामिल हैं। इनके बारे में थोड़ी देर में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे।

रेडियो मनोरंजन के लहरों पर हम पेश करने प्रोग्राम गीत गाथा देश की। दोस्तों 9, 6 और 9 अगस्त 1945 की याद में, उन दो तारीखों की याद में जब पहली बार के लिए मनुष्य को परमाणु बम्स, एटॉमिक बम्स का अनुभव हुआ, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर बम गिराए गए, तो इन दिनों इस दर्दनाक घटना की एनिवर्सरी मनाई जा रही है जापान में। और इसी संदर्भ में आज हमने विषय रखा है मॉरिशस के सैनिक मॉन्यूमेंट्स, मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स, जो हमें उस जमाने की याद दिलाते हैं। और बात करने जा रहे हैं हम फो अदेलाइड की। फो अदेलाइड, जो सिटाडेल नाम से भी जाना जाता है, ये पोर्टविस मोका रेंज में स्थित पुचित मोताएं पहाड़ पर है। 1830 और 1840 के बीच अंग्रेजों ने इसे बनाया था। इनफैक्ट बंदरगाह की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने 4 किले बनाए।

बनाए थे फॉर जॉर्ज फॉर विलियम फॉर विक्टोरिया और फॉर अडेलाइड इन चारों में से सिर्फ ये आखिरी बचा हुआ प्रमुख किला है बाकी तीन समय के साथ साथ परिवर्तित हो गए फॉर अडेलाइड को रेस्टोर करने के लिए बहुत प्रयास किया गया है और इसके साथ मॉरिशस के इतिहास का एक प्रमुख पन्ना जुड़ा हुआ है और ये साथ और ये साइट पर्यटकों के लिए एक सबसे फेवरेट साइट है जब वे हमारे देश को विजिट करने आते हैं और वहां से राजधानी और पोर्टुगीज बंदरगाह का नजारा वाकई मेमोरेबल है

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत गाथा देश की संजय के साथ। और आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पेश कर रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम मॉरिशस की मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स पर। कुछ समय पहले हमने बात की सिटाडेल की, अब बात करते हैं माउथिलू टावर की। अगर आप पश्चिम तट पर पाई जाने वाला लाफोनोज बीच जाते हैं तो पत्थरों से बनाया गया ये टावर आप मिस नहीं कर पाएंगे। 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी हमलों से पश्चिमी तट की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा ब्लैक रिवर में बनाया गया ये गोल पत्थर का रक्षा टावर एक फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था, खासकर स्कूल के बच्चों के लिए जब वे एक्सक्यूशन में जाते थे। ये टावर आज भी खड़ा है और हमारे देश के इतिहास का एक प्रमुख पन्ना हमें याद दिलाता है।

Thy nation is my pride. Moses मेरा गर्व है. गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हम बात कर रहे हैं मॉरिशस के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स जो मिलिट्री से संबंधित मिलिट्री से कनेक्टेड है. बात करते हैं बे दु लार्सेनल की. उत्तर में स्थित इस जगह पर फ्रांसीसी सेना के गोला बारूद बनाने वाले एक पुराने कारखाने के अवशेष पाए जाते हैं और ये कारखाना 1774 में एक जबरदस्त धमाके में नष्ट हो गया था. लेकिन आज भी उस कारखाने के चंद वेस्टीज जैसे कहते हैं उपस्थित हैं. शायद इसी से आया नाम जगह आर्सेनल का जो तेरूज और त्रियोले के बीच में पाया जाता है. सो पहली जगह जिसके बारे में हमने आपको बताया फो अदेलाइड, दूसरी जगह हमने आपको बताया मार्टेलो टावर और ये तीसरी जगह बे दु लार्सेनल.

तब मुझको जीना अगर ऊपर वाले ने हमको इस धरती पर उतारा है तो हर एक को जीने का हक है प्रोग्राम गीत गाथा देश की संजय के साथ रेडियो मनोरंजन के लिए पर सबको बहुत-बहुत धन्यवाद साथ निभाने के लिए ध्यान देने के लिए Military Monuments of Mauritius 6 और 9 अगस्त 1945 को 1945 को जापान पर दो परमाणु बम्स गिराए गए थे एटॉमिक बम्स गिराए गए थे जिसके कारण लाखों की संख्या में पल भर में लोग मारे गए थे और उन्हीं को श्रद्धांजलि के तौर पर याद करते हुए हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं बात करते हैं 1740 में बना पोर्टविस का एक मिलिट्री हॉस्पिटल की जी हां 1740 में फ्रांसीसी गवर्नर माई दो लाबूदने के समय में बना ये पुराना औपनिवेशिक हॉस्पिटल उस जमाने का एक ऐतिहासिक बास्टियों का हिस्सा था और माना जाता है कि उसके निर्माण के लिए दक्षिण भारत से कारीगरों को लाए गए थे जो हमारे देश के पहले भारतीय मूल के नागरिक बने यही मिलिट्री हॉस्पिटल न्यू बना बाद में आने वाले जीटू हॉस्पिटल का

गीत गाथा देश की इस प्रोग्राम के लगभग अंत तक हम आ पहुंचे हैं। बात करते हैं ईल दो लापास और पुआंचुजियाब की, जो देश के साउथ ईस्ट कोस्ट पर पाए जाते हैं। ये टट्टी या टोप खाने और किले बंदी हैं, जिनका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से मेबक की दक्षिण पूर्वी खाड़ी की सुरक्षा के लिए किया जाता था। बाद में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड किया गया था। इन सबों के अलावा मॉरिशस के बहुत से इलाकों में आपको एक या दो टोपों के नमूने देखने को मिलेंगे, वो पोर्टविस के प्लासडॉम में हो या आल्बियों के समुद्र तट पर हो या तो सुलिया के तट पर रॉबर्ट एडवर्ड म्यूजियम के बगल में। ये सभी मॉन्यूमेंट्स हमको याद दिलाते हैं हमारे देश के इतिहास का, एक ज़माना जब फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और दुनिया भर में अपनी हुकूमत अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में थे। आज समय बदल गया है, स्थिति बदल गई है, हालात बदल गए हैं, लेकिन मनुष्य के मन से हुकूमत की युद्ध की वृत्तियां समाप्त नहीं हुई हैं। इन दिनों जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर

पर गिराए गए एटॉमिक बम्स की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। हम बस यही आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसे, ऐसी नौबत फिर से ना आए। धन्यवाद, नमस्कार, जय मॉरिशस।

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:06 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम के साथ, यानी कि पुराने नगमों में। आज बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसे एक्टर की जिनका 2.5 किलो का हाथ भी फेमस हुआ और रोमांटिक अंदाज भी खूब पसंद आया।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। तो आज उनके शानदार गानों की भी बात होगी, जहाँ पे उनका फिल्मी करियर, जहाँ पर कहते हैं जीरो से कहाँ पर राइज किया, उसकी भी बात होगी, और उनकी दिलचस्प कुछ बातें जिंदगी की भी होंगी। तो जुड़े रहिए अपने ही प्रोग्राम के साथ RM3 रेडियो मनोरंजन पर पुराने नगमों में।
1: RM3 रेडियो

0: पुराने नगमे।
1: 5:12 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ और मैं इस समय आपके साथ हूं पूनम। हम बात कर रहे हैं सनी देओल जी की, जिनका जन्म हुआ 19 अक्टूबर 1957, यस 19th अक्टूबर 1957 को इंडिया में पंजाब में हुआ। उनके पिता थे बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी और उनकी माँ हैं प्रकाश कौर जी। भाई बॉबी देओल, बहनें विजेता और अजिता और उनकी दो और बहनें हैं जिनका नाम है ईशा देओल, अहाना देओल, उनकी जो कि हाफ सिस्टर्स हैं। यानी सिनेमा इस परिवार में सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पीढ़ियों से चला आ रहा है, उनके खून में है। कहते हैं ना कि एक्टिंग हो चाहे डांस हो चाहे उनकी बातें हो, पर लड़कों में थोड़ा सा रह गया। जैसे कि धर्मेंद्र साहब को डांस नहीं आया उस तरीके से, और उसी तरीके से सनी देओल को भी डांस का इतना शौक नहीं हुआ, पर उनकी एक्टिंग, उनकी अदाएं, उनकी आंखों की से बात करना या उनके हाथों की जो कहते हैं ना ही मैन वाला लुक, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। चलिए जुड़ते हैं इस प्यारे से गाने के साथ, उसके साथ बातें करेंगे बहुत सारी।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: हम बात कर रहे हैं ऐसे हीरो की जिनका नाम है सनी देओल। पिता इतने बड़े सुपरस्टार हों तो एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होती है, लेकिन सनी देओल ने अपनी पहचान खुद बनाई। 1983 में बेताब मूवी से उनकी धमाकेदार एंट्री हुई, साथ में थी अमृता सिंह। और मज़ेदार बात यह है कि शुरुआत रोमांटिक हीरो से हुई, फिर यही सनी आगे चल के बॉलीवुड से सबसे पावरफुल एक्शन हीरो में गिने जाने लगे। यही तो बात है इस घर की, कहते हैं यहाँ पर शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है। आप अगर पुरानी मूवीज़ में धर्मेंद्र जी को देखें तो बहुत ही फ्लॉप मूवीज उन्होंने शुरुआत में दी, पर उनकी धीरे धीरे एक्टिंग ने कमाल किया। और वैसे सनी देओल का भी हाल ऐसे ही था, इन्होंने शुरुआत में तो बहुत सुपर हिट मूवी दे दी, बट उसके बीच में थोड़ा सा डाउन हो गए। बट कहते हैं ना कि इनके ब्लड में है एक्टिंग, और जब एक्टिंग शुरू की तो कहते हैं आज पूरा घर यानी कि सभी बॉलीवुड स्टार हैं।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:28 हो चुके हैं दोस्तों, और आप बात कर रहे थे हम आज सनी देओल की, और आप ही के प्रोग्राम में पुराने नगमों में। ये सच बात है, ये शायद नाम ही इतना प्यारा रखा है कि इसमें नगमे ही हैं, गाने ऐसे कि पुराने हो के भी पुराने नहीं लगते। तो हम बात कर रहे हैं सनी देओल की, जहाँ पे बात हुई शुरू बेताब मूवी से, उन्होंने शुरुआत की पर सफ़र फिर कहाँ रुकता। उन्होंने बनाई मूवी अर्जुन, त्रिदेव, घायल, दामिनी, घातक, बॉर्डर, जिद्दी, गदर, अपने और गदर 2। सनी देओल की खासियत थी कि कम स्टाइल दिखाना, लेकिन स्क्रीन पर आते ही पूरा इम्पैक्ट, एक्शन हो या इमोशन हो या वो दमदार डायलॉग, उनका अपना ही उनका अंदाज रहता था। घायल, दामिनी और घातक उनके करियर की सबसे डिफाइंड मूवीज में से एक हैं, और कहते हैं कि जब जब उन्होंने एंट्री की तब तब लोगों ने सिर्फ तालियां बजाई।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:34 हो चुके हैं दोस्तों, अगर आप जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के साथ तो मुझे पता है आपके मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250620 पर। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। सनी देओल ने अमृता सिंह, मीनाक्षी शेषाद्री, टिम्पल कपाड़िया, श्रीदेवी, जूही चावला, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा जैसी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, और ये एक्ट्रेसेस आज भी काम कर रही हैं। और अगर बात करें हम मेल स्टार्स की, तो उन्होंने जैकी श्रॉफ, नसरुद्दीन शाह, संजय दत्त, सलमान खान, अक्षय कुमार और अपने पापा धर्मेंद्र व भाई बॉबी देओल के साथ भी स्क्रीन शेयर की। और कहते हैं धर्मेंद्र सिर्फ एक ही बात कहते थे कि बच्चों आप जो काम कर रहे हैं उसमें अपना पूरा टाइम डालो। जिस दिन आपको एहसास हो गया कि आपकी एक्टिंग की वजह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, उसी दिन तुम्हारी जीत होगी। और वो हमेशा अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही कहते थे, तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तुम मेरे यार हो। तो ये बात उनकी आज भी फिट बैठती है कि उन्होंने हमेशा कहा जीतो, हंसो, खुश रहो, इन्जॉय करो लाइफ को। अगर आपने इन्जॉय नहीं की तो फ़ायदा क्या इस धरती पे आके। तो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए धर्मेंद्र साहब जी हमारी ज़िंदगी से तो चले गए, बट उन्होंने जो सीख दी है सभी को, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हंसते मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:43 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ, यानी कि पुराने नगमों के साथ। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। राजकुमार संतोषी, ऐसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, चाहे बात करें जेपी दत्ता, राहुल रावेल एंड अनिल शर्मा जैसे डायरेक्टर्स ने सनी को अलग अलग रंग दिए। हमेशा डायरेक्टर्स उनको नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ एक या तो एक्शन हीरो ही बन के रहें या वो एक ऐसे अदाकार बने जहाँ पर उनको सिर्फ प्यार प्यार की बातें हों। वो हमेशा चाहते थे कि इनके अंदर इतनी खूबियाँ हैं तो उनको ऐसी यूज़ किया जाए कि जहाँ पर लोग सकें कि उनकी जो पर्सनालिटी है कितनी काम की है। तो उसके बाद उनको मिली जब मूवी गदर, और उन्होंने गदर मचा दिया। उसमें जो गाना गाया उन्होंने, मैं निकला गड्डी लेके, उसमें तो आज भी लोग कहते हैं कि जब भी कोई ये गाना चलता है तो सनी देओल का जो एहसास है उनको आज भी होता है। और अभी तो उन्होंने गदर 2 भी बना रहे हैं, और उसके अंदर भी उन्होंने जो काम किया है बहुत ही औसम है। तो ये गाने चलते रहेंगे, ये प्रोग्राम चलता रहेगा, पर आप देखिए कि कितनी मेहनत होती है। स्क्रीन के पीछे काम करना इतना आसान नहीं होता। हमें जो एहसास होता है, जैसे हम रेडियो के पास पीछे से बोल रहे हैं, आपको लगता है कितना आसान है, पर जब हम सामने बैठते हैं तो एहसास होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए कहते हैं कि जब स्क्रीन पर एक्शन हीरो बनकर आए वो, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो फट्टे चक देता हूँ। तो बस उन्होंने वो गाना चलाया, और ये गाना सुनिए उदित नारायण की आवाज़ में गदर मूवी से।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: 5:50 हो चुके हैं दोस्तों और हमारा टाइम ऐसे निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा, और इतनी सारी बातें करनी है, पर चलिए बात करते हैं सनी देओल की। तो उनकी एक्टिंग को सिर्फ ऑडियंस का ही प्यार नहीं, बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। घायल के लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला, स्पेशल जूरी सम्मान और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मिला। फिर दामिनी के लिए नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर दोनों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी सम्मान मिला। और दामिनी उनका जो कोर्टरूम वाला जो अंदाज था, जो डायलॉग वो बोलते आ रहे थे, और आज भी कहीं पर कोई ऐसी बात छिड़ जाती है तो हर कोई यही कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो डायलॉग तो किसी को आज तक नहीं भूला। जिस जिसने वो मूवी देखी है उसको एहसास होगा कि ये डायलॉग आज भी वैसे ही बरकरार है, चाहे किसी की भी डेट को मैनेज करना हो। और अगर आप बात करें सनी देओल की, तो वो आप सोच रहे होंगे कि वो आराम कर रहे होंगे, एक उम्र में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल 2026 में भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। अभी वो बॉर्डर 2 बना रहे हैं और चल रही है, और उसके साथ में अभी रामायणा में भी उन्होंने हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं, और बहुत जल्दी वो फिल्म रिलीज़ होगी और आप सब उसको देख पाएंगे। और कहते हैं कि धर्मेंद्र साहब हमेशा यही कहते थे, मेरे बच्चे बहुत स्ट्रांग है, देसी घी खाते हैं ना, तो देसी घी वाले बच्चों में ताकत तो होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा

0: कि हाँ ये जो मूवी है जो अब तुम बनाने जा रहे हो, एक दिन तुम देखना हनुमान का जब रोल करोगे तो अब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी ताकत है तुम में। और ये सच बात है, जब उन्होंने उनको ये रोल मिला तो उन्होंने एकदम से कहा यस मैं हनुमान का रोल करूँगा।
1: RM3 Radio.

तो दोस्तों सनी देओल के एक्शन और इमोशन और यादगार नगमों के साथ आज का साथ यहीं तक। किरदार बदलते रहते हैं, दौर बदलता रहता है, लेकिन सनी का अंदाज हमेशा अपना रहा। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे पुराने नगमों में खूबसूरत कहानी के साथ। नमस्ते आदाब। पर हम अभी आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, पहले होगी न्यूज़ और उसके बाद आप जुड़ेंगे नई सोच के साथ। और रात को 9 बजे तक दिलों की आवाज़ तक मैं हूँ आपके साथ पूनम।

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मॉरिशस के स्कूल पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी, नए विषयों और लोअर सेकेंडरी में ज्यादा विकल्पों पर विचार। पढ़ाई और कामकाज में एआई का बढ़ता प्रभाव, युवाओं को आने वाले बदलावों के लिए तैयार करने पर जोर। मॉरिशस और चीन के बीच स्वास्थ्य समझौता, स्ट्रोक के शिकार मरीजों के इलाज के लिए एंजियोग्राफी मशीन का दान। विदेश में धरती के बढ़ते तापमान का असर, सूखे से डैनूब का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे, यातायात और पर्यटन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मिड ईयर रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा

0: चर्चा की गई। इसका उद्देश्य छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है। ज़रा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मॉरिशस में मीडिया रिव्यू मीटिंग के लिए आए कैम्ब्रिज के प्रतिनिधियों ने शिक्षा क्षेत्र के साझेदारों से मुलाकात की। इस दौरे से अब तक किए गए काम की समीक्षा करने में मदद मिली। यहां पोर्ट लुई के रॉयल कॉलेज में कैम्ब्रिज के डायरेक्टर ऑफ अक्रेडिटेशन ने मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स के प्रमुख के साथ अपनी पढ़ाई के बाद के मार्गदर्शन पर अभिभावकों और छात्रों से चर्चा की। मॉरिशस की ये यात्रा स्कूली पाठ्यक्रम के विकास में अगले चरणों पर चर्चा करने का अवसर भी है। इस प्रकार नए विषयों को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिको उकबर बताते हैं,
2: les compétences qui le monde d'aujourd'hui et le monde de demain pour besoin et qu'il est là nous capable forme nos mêmes enfants vers la compréhension de du monde, la compréhension de l'entrepreneurship.
1: आज और कल की दुनिया को जो प्रतिभा चाहिए उसी के आधार पर हम अपने छात्रों को तैयार कर रहे हैं, जैसे ठेकेदारी, समुद्र आदि के क्षेत्रों में, और किस तरह अप्लाइड लर्निंग को भी अमल में ला सकते हैं। इसका उद्देश्य लोअर सेकेंडरी से ही विकल्पों का दायरा बढ़ाना और छात्रों को अधिक विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करना भी है। एससी और एचएससी स्तर पर तकनीकी धाराओं पर भी विचार किया जा रहा है। कैम्ब्रिज के साथ इस काम से कुछ विषयों को आधिकारिक मान्यता मिलने की भी उम्मीद है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स वालिद बगादी ने कहा, अगले चरण के लिए हम शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करना। सरकार को पहले अपनी आर्थिक रणनीति के मद्देनजर अपनी प्राथमिकताओं की परिभाषा देनी होगी।
3: Its economy, how it intends to create pathways for those candidates, and so once that is determined, Cambridge will provide the necessary support.
4: À partir du moment où tout le monde travaille avec Cambridge, met en place que Cambridge dans SC Technical, dans l'agriculture et les fins tombent d'accord pour le créole, quand les fins finis examinent ce qu'on appelle the assessment materials et ce qu'on appelle the assessment framework. Pour nous capables de gagner la reconnaissance officielle de Cambridge pour que ça mène ces là vienne officiellement des matières d'examen.
1: इसलिए मॉरिशस की स्कूली शिक्षा प्रणाली में इन बदलावों को शामिल किए जाने से पहले चर्चाएं जारी रहेंगी।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI धीरे धीरे पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और कामकाजी दुनिया का अहम हिस्सा बन रही है। आज शनिवार 8 अगस्त को मोंटाई ब्लांश स्थित पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में आयोजित यूथ कन्वेंशन में युवाओं से इस टेक्निक से मिलने वाले अवसरों को बेहतर ढंग से समझने और आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार करने की अपील की गई। ये पूर्वी क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया ऐसा कार्यक्रम है।
5: एक ऐसा आईना जो अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि जानकारियां भी दे सकता है। इस तकनीक को शामिल करना AI के इस्तेमाल से संभव हुआ है। योगेश देव जी कहते हैं,
6: Slightly, vous trouvez les objets ou les températures qui peuvent faire dans différentes régions avec aucun ou agenda aussi.
5: स्लाइड करने पर ये समय अलग अलग इलाकों के तापमान और एजेंडा भी बता सकता है। हम कोडिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। हम वाइब कोडिंग इस्तेमाल करते हैं, AI की मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। वैभव कहते हैं, AI हमें ऐसी जानकारियां दे सकती हैं जो हम नहीं जानते, रिवीजन में भी मदद करती हैं।
6: फॉर एग्जांपल डिमांड इंफॉर्मेशन कि न्यू पा कोने टू ले जूल का द न्यू फॉर एग्जांपल डिमांड रिवीजन।
5: पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, खासकर पढ़ाई और कुछ परियोजनाएं तैयार करने में। तलाईवेन बताते हैं, अगर अध्यापक ने जो कहा हम समझ नहीं सके तब AI से पूछ सकते हैं, पर हम हमेशा इस पर निर्भर नहीं रह सकते। शबनम कहती हैं, ग्राफिक डिजाइन कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें AI से पैदा कर
6: सकती हूँ।
5: दिलान बताते हैं, दुनिया भर में AI बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ कानून होने चाहिए। जैसे जैसे AI अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही है, एक सवाल उठता है, इस पीढ़ी को काम की दुनिया में आने

0: वाले बदलावों के लिए कैसे तैयार किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुखों बताते हैं, विश्वविद्यालयों में AI पर कोर्स देना अनिवार्य हो गया है। इस साल सभी करिकुलम्स पर फिर से गौर कर रहे हैं, अगले साल से इसमें AI भी शामिल करेंगे। मालिक वर्ग से भी छात्रों को AI का प्रशिक्षण देने की मांग करते हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नियमों को और सख्त किया जाएगा। ICT मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं, नौजवानों को AI का प्रयोग करना आना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई में सहयोग के लिए।
1: Il est très important qu'ils nous mettent bande garde fou dans le système, sinon on est capable d'un petit peu difficile pour capable amener les autres genre de modération.
0: प्रदर्शन से लेकर अपने भविष्य पर विचार करने तक ये युवा पहले से ही तेजी से हो रहे बदलावों का सामना कर रहे हैं। अब चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से समझना और इसका इस्तेमाल करना सीखना।
2: चीन और मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर आज दोपहर एबेन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के बीच हुआ है। समझौते के तहत मॉरिशस को डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी मशीन दान में दी जाएगी। इस उपकरण की मदद से स्ट्रोक यानी हार्टअटैक से पीड़ित मरीजों पर ऐसे उपचार किए जा सकेंगे जो उनकी जान बचाने में अहम हो सकते हैं।
3: मॉरिशस में हर साल स्ट्रोक के 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से एक तिहाई मरीज बच नहीं पाते हैं, जबकि अन्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें आंशिक या पूर्ण पक्षाघात यानी पैरालिसिस शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र को स्ट्रोक के पीड़ितों का बेहतर इलाज करने में सक्षम बनाने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मुख्य रूप से डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन दान करने के साथ साथ मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। डॉक्टर अश्वमेध दीना सिंह बताते हैं, जब सर से खून बहने लगता है तो उसे रोक देना चाहिए, वरना ये जम सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा उपकरण दिया जा रहा है जो एक अंजो की तरह होता है, जो उस आर्टरी तक जाता है और तुरंत खून को बहने से रोक देता है। चीनी और मॉरिशस पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौते में न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी और ऑफ्टाल्मोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञों के मॉरिशस आने का भी प्रावधान है। डॉक्टर हुआंग शिफांग ने कहा, चीनी पक्ष डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि एक ऐसी पेशेवर टीम तैयार की जा सके जो स्वतंत्र रूप से न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं करने में सक्षम हो। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्छू ने कहा, हमें एक टेक्निकल इंजीनियर भेजा जा रहा है जो टेली सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि बेहतर संचार हो। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मॉरिशस में राजदूत डॉक्टर हुआंग शिफांग चीनी डॉक्टरों के जल्द ही मॉरिशस आने के लिए बहुत जल्द बीजिंग की यात्रा करेंगी, जो कुछ ही हफ्तों में होने वाली है।
2: ISKCON इस साल दो महत्वपूर्ण अवसर मना रहा है, अपनी स्थापना के 60 साल और इसके संस्थापक भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा, जिन्हें शेला प्रभुपदा के नाम से भी जाना जाता है, कि मॉरिशस की ऐतिहासिक यात्रा के 50 साल। उनकी ये यात्रा ISKCON के इतिहास में आज भी विशेष स्थान रखती है और उनकी विरासत आज भी आगे बढ़ रही है। आज एबेन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पॉल बेरांजे ने विपक्ष नेता के रूप में चेतन बाबूलाला की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोना बेरांजे को विपक्ष की विप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: पॉल बेरांजे ने चेतन बाबूलाल की विपक्ष नेता के पद पर नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी।
4: Nous fin écrire au président de la République. Nous fin écrire une lettre signée par nous trois. Pour éclaircir les choses et non pas pour demander quoi que ce soit. Nous, le président exerce sa liberté totale sous la Constitution. Qui fait nous écrire? Parce que nous voulons bien mettre la Constitution, dire si le président trouvait qu'il y a un nouveau parti qui est dans la majorité, il n'est même pas obligé.

0: Et l'ICAPAV sans le leader de l'opposition. Loupé propose l'honorable Jean-Alain Béranger comme whip de l'opposition.
1: Paul Béranger, Véronique Le Govind K. Junior, ministre qui pad se istifé ko lekar patrakaron ke sawalon ka bhi jawab diya. Unhone kaha ki ve jaanch puri hone ka intezar karenge. Paul Béranger ka manna hai ki hal ke ghatnakramon, khaskar pension se jude mamlon ko dekhte hue, shasan chalane ke tareeke mein badlav zaruri hai. Unhone anya sujhavon ke sath फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट और एक इंडिपेंडेंट फिस्कल कमीशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा है.
2: राजपोत स्थित सेंट्रल बिल्डिंग में MSM ने भी एक प्रेस सम्मेलन लगाया जो लोजोंगा ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लाक में हुई हालिया जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक ले गोविन का इस्तीफा शामिल था.
3: जोली जोंगा ने विपक्ष के नेता के पद से अपने इस्तीफे पर बात की. जोली जोंगा का दावा है कि MSM पेंशन योजना में संशोधन करेगा. उनके अनुसार मौजूदा प्रणाली मैनुअल वर्कर्स के प्रति अन्यायपूर्ण है. MSM छोटे और मध्यम उद्योगों पर लगाए जाने वाले VAT की सीमा की भी समीक्षा करने का वादा करता है. MSM ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पूछताछ के दायरे में आई सांसद वेरोनिक ले गोविंद के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से जांच शुरू करने की मांग की है. MSM सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित एक नई नीति की भी वकालत करता है. जोली जोंगा ने हाल ही में कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को बधाई दी है और टूर डी फ्रांस में किम्बर्ली ले कुपियनो के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है.
2: झरने, प्रकृति की खूबसूरती का अनमोल नज़ारा और छुट्टियों में सैर सपाटे का पसंदीदा ठिकाना, और वाटरफॉल भी ऐसी ही एक जगह है. मिनीसी वाटरफॉल भी एक ऐसी जगह है जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं. पिछले 8 सालों में मॉरिशस के विभिन्न झरनों में डूबने से 13 लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे में स्कूल की छुट्टियों के दौरान बचाव दल और हाइकिंग विशेषज्ञ लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं. विदेश में धरती के बढ़ते तापमान का सीधा असर अब साफ दिखाई दे रहा है. रिकॉर्ड तापमान और कई महीनों तक बारिश नहीं होने के कारण डैन्यूब नदी के कुछ हिस्सों में पानी का स्तर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. सूखे की वजह से कई क्रूज जहाजों की आवाजाही रुक गई है, माल ढुलाई धीमी हो गई है और मध्य यूरोप के कई देशों में पर्यटन पर भी गंभीर असर पड़ा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर बातचीत जारी है. ये मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वाशिंगटन का कहना है कि उसे उम्मीद है कि ईरान और ओमान के बीच जल्द ही एक समझौता हो सकता है, लेकिन तेहरान ने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने का फैसला मुख्य रूप से ईरान की शर्तों को स्वीकार किए जाने पर निर्भर करेगा, इसलिए स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है. और कोंगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. देश में अब तक 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 1,850 लोगों की मौत हुई है. सबसे ज़्यादा मामले इचूरी प्रांत में है, लेकिन बीमारी 4 अन्य प्रांतों तक भी फैल चुकी है. इस बार इबोला का दुर्लभ प्रकार सामने आया है, जिसके लिए पहले इस्तेमाल होने वाले टीके और खास इलाज उपलब्ध नहीं है. प्रभावित इलाकों में संघर्ष और सुरक्षा की समस्या के कारण बीमारी को रोकने का काम भी मुश्किल हो रहा है. देशी देशी खबरों के बराबर अब मौसम का हाल सुनते हैं.
3: आज रात के दौरान पूर्व से पाए जा रहे अस्थिर बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा. अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी, कभी कभार सामान्य वर्षा होगी. ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कल दोपहर बाद आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से

20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह से दक्षिण पश्चिम के समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, इसीलिए कल सुबह से पश्चिमी और दक्षिणी लगुनों में

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए से आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: वेजी रोड गुडलैंड्स में, वेजी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 इयर्स ओल्ड के श्री जयराज टकुरी, श्री जयराज टकुरी जो रमेश नाम से ज़रा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर वेजी रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। लातूर रोड रोश्टेमी 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री गोहाना चिमादू की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला चिमादू के घर लातू रोड रोश्टेया से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। भीम जोरी स्ट्रीट टेरोजमी 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेशमी जोरी सुकलोल पैदाइशी नाम सुकलोल और जो रेशमी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विकास जोरी के घर भीम जोरी स्ट्रीट टेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सिर गुलाम लेन नोवेल फ्रांस में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी डोलोरी जो किशोर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर से गुलाम ले नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोवेल फ्रांस की रामजेन लेन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रुई मगाजन विलनुआ मेबर्ग में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री नौबत सिंह सियापत जो राजेश नाम से ज़रा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सोमवार 10 अगस्त को दिन के 10 बजे उनके घर रुमागाजा विलनुआ मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए टोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन मंडे 10 अगस्त एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: 35 मिनट हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप जुड़े हैं अपने ही शो नई सोच के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। आज आपसे एक छोटा सा सवाल, जैसे हम हमेशा करते रहते हैं, ये 30 मिनट्स का जो प्रोग्राम होता है ये नई सोच पे होता है। ये नहीं सोचिएगा कि हम कुछ अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये हम छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें दिल करता है आपसे करें। कई बार होती है इंसान इग्नोर कर देता है उन बातों को, कई बार अपने दिल में रख लेता है और कई बार ऐसा एहसास होता है कि अरे नहीं, ये बात तो शायद इसने जो कही है सच है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आप आजकल जो बच्चे हैं या हम सब हैं, थैंक यू कहना भूल गए हैं? बाहर कोई हमारे लिए छोटा सा काम करता है, हम तुरंत कहते हैं थैंक यू, लेकिन घर में कोई रोज़ हमारे लिए इतना कुछ करता है तो हम सोचते हैं अरे यार ये तो अपना है, इसको क्या थैंक यू बोलना। कई बार अपनों को भी सुनना अच्छा लगता है थैंक यू। तो आज बात करते हैं इसी छोटी सी आदत पे, और अगर आदत नहीं है तो आज से बनाते हैं, हर किसी को कहते हैं थैंक यू।
1: RM3 रेडियो

छह बजकर 41 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज में ना बताती तू ना ता दिन धिन्ना। क्या गाना है, सिंपल सा गाना है, बट इसमें एहसास यही है कि तू बताती क्यों नहीं है। जी हम बात कर रहे थे आज क्यों कोई थैंक यू नहीं बोलता। बाहर वालों को थैंक यू बोला जाता है, पर घर वालों को, किसी ने सुबह आपको चाय बना के पिला दी, या किसी ने आपके कपड़े धो दिए, या किसी ने आपके लिए खाना तैयार कर दिया, बट आप बिना कुछ कहे चल देते हैं, और पीछे वाले को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, एहसास नहीं होता कि उसने कितना कुछ कहा, कितना कुछ किया, सुबह से उठ के अपनी नींद खराब की। तो अगर आप उनका हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहें थैंक यू, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कई बार एहसास होता है कि दो वर्ड का जो शब्द है, पूरे एक तो रिश्तों की बॉन्डिंग को स्ट्रांग बना देता है, और दूसरा ही साथ में ये रिश्ते को एक और कहते हैं ना, एक मुकाम देता है, और एहसास होता है कि ये थैंक यू बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज से ये आदत डाल ली तो सच में जानिए आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाए।

0: छः बजकर 48 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। हमारे ये जो नई सोच का जो कार्यक्रम है 30 मिनट्स का, इसको इसी सोच के हिसाब से बनाया गया है कि कई बार घर में या परिवार में या जो बच्चे दुनिया में हैं और जो अभी थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ नई सोच, कोई ऐसी बात हो जाए जो उनके कान में जाए और उन्हें एहसास हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सिर्फ गाने ही नहीं होते, सिर्फ बातें ही नहीं होती, सिर्फ स्माइल नहीं होती, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। अप एंड डाउन्स आते हैं और वहाँ पर अगर आपने किसी का हाथ पकड़ के या आपने किसी को इतना एहसास दिला दिया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, जिस तरीके से कई बार पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बच्चों को एहसास ही नहीं होता, और कई बार बच्चे पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, पेरेंट्स को एहसास नहीं होता कि हमारे बच्चे हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। वहीं पर अगर ये दो शब्द बोल दिए जाएँ किसी की भी तरफ से, अगर वो एहसास जाग जाए कि हाँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। कई बार हमारा कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम बात नहीं करते पर उसके उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है, अगर दिल के अंदर आ जाए कि उसको भी हम थैंक यू बोल सकें तो आप मैसेज कर सकते हैं उस इंसान को या उसको कॉल कर सकते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं कर सकते, आप उसके सामने नहीं जाना चाहते, दिल के अंदर अपने कह दीजिए थैंक यू उस इंसान ने, चाहे भले उससे मेरा रिश्ता आज सही नहीं है पर कभी तो सही था ना। अगर उसने आपको किसी भी रास्ते में गलत रास्ते से बचाया है या कहीं जाने से बचाया है और आपको एहसास दिलाया है कि बहुत ज़िंदगी प्यारी है और इसके साथ अच्छे से जियो, तो मैं तो कहती उसको दिल से बोलिए एक बार थैंक यू।
1: RM3 रेडियो

0: नई सोच। 6:54 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। तो आज की नई सोच बस इतनी सी है, बाहर वालों को थैंक यू कहते हो तो अपने लोगों को एक बार कहना ज़रूर मत भूलिए कि थैंक यू आप सभी को, क्योंकि जो रोज़ हमारे साथ हैं उनकी वैल्यू भी रोज़ होनी चाहिए। इसी के साथ नई सोच का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, पर मैं आपसे इजाज़त लूँगी अभी नहीं, रात को 9 बजे, और इसके बाद हम जुड़ेंगे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम के साथ। मेरे साथ ही बने रहिए और आप सभी का दिल से थैंक यू जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं या आगे भी रहेंगे या किसी भी आरजे को सुनते हैं। मुझे तो लगता है कि सारे आरजेस कुछ ना कुछ अपनी तैयारी करके आते हैं, बहुत सारा प्यार लेकर आते हैं आपके लिए। और बस इतना ही कहते हैं, अपने घर में जो भी काम कर रहे हो, चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, चाहे किसी भी जगह जा रहे हो, हंसते हुए मुस्कुराते जाइए और घर वापस मुस्कुराते हुए आए। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो बताइए, आज का ठंड महसूस हो रही है ना, ऊपर से कहीं कहीं हल्की बारिश भी, मतलब मौसम ने वीकेंड की शाम को अपने आप ही बना दिया। अब आप घर पर हैं या रास्ते में हैं, खाना बना रहे हैं या बस आराम से बैठे हैं, तो जो करते हैं करिए, लेकिन अगले दो घंटे कहीं मत जाइए। मैं आपके साथ हूँ इस समय, यानी कि मैं हूँ पूनम, और आपके पसंदीदा गाने जो हम चला रहे हैं एक एक करके चलाएंगे। शुरुआत करेंगे थोड़े से पुराने गानों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो कि कहते हैं कि शाम हो, सैटरडे की या संडे की पुराने गानों के साथ एंजॉय करने का दिल करता है, क्योंकि उनका भी तो टाइम है ना। तो हम चलेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, उस एरा पे आएंगे जहां पे कह सकते हैं कि 90s और 2000 तक चलेंगे। पर अगर आपको भी किसी के लिए दिल से कोई बात निकल रही है या आपको कोई बात कहनी है, कोई मैसेज देना है, तो आप दे सकते हैं 5250-6200 पर, और कॉल थोड़ी देर बाद कीजिएगा 4028070 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए अपने गाने, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़े से ज़्यादा प्रेशर टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें होती रहती हैं, एक एक करके निकलती जाएंगी दिमाग से, क्योंकि हम गाने ही ऐसे चलाएंगे। इंजॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही प्यारा गाना है, एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे है।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:21 हो चुके हैं और जो दोस्त इस समय गाड़ी चला रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, ज़रा आराम से चलाइएगा। जल्दी किस बात की है, गीत सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप जब घर पहुँचें तो बस आराम से पहुँचें, आप बस ये कहें कि अरे इतने मज़ा आया, गाने चलते रहे और मेरी मुझे पता ही नहीं चला मैं कब घर पहुँच गया। तो इंजॉय कीजिए गानों को। और वैसे कहते हैं ना कि जब अपने लोग साथ जुड़े होते हैं तो और अच्छा लगता है। इस समय हमारा साथ दे रही हैं दिव्यानी जी और बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को इंजॉय कर रही हैं और कह रही हैं कि एक आशिक मूवी थी बहुत पुरानी, उसका गाना ज़रूर चलाएगा। तो बिल्कुल हम आपके लिए चलाने वाले हैं। साथ में हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए हैं यूएसए से और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। और उन्होंने जो सबसे पहला गाना हमने चलाया था वो उनकी पसंद का था और इतना प्यारा गाना था, मेरा ही दिल आ गया था उस गाने पर। थैंक यू सो मच आप सबका साथ देने के लिए, प्यार देने के लिए, इतना विश्वास देने के लिए। और RM3 हमेशा आपके साथ है 24 आवर्स। जहाँ पर हमें लगता है कि आपके गाने तो चलते हैं बट थोड़ा सा जब आपके गानों के साथ आपके मैसेजेस पढ़ते हैं तो हमारा दिल और खुश हो जाता है। उसके साथ में हमारे साथ सुरेश शर्मा साजदा जी भी जुड़े हुए हैं और बेटे निशाल के लिए बस इतना कहना चाहते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा अपना ख्याल कर लो और हमारी ड्यूटीज़ पूरी हो जाएंगी। और ये सब पेरेंट्स की यही बात होती है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाएं। देखिए गाने तो हमने चलाना ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे कॉल्स भी आने लग गए, तो बस कॉल करते रहिए। अगर हो सके जब मैं बात कर रही हूँ उस टाइम कॉल मत किया कीजिए क्योंकि मैं उठा नहीं पाती हूँ, बट जैसे ही आप उस मैं रख दूँ और गाना स्टार्ट हो जाए आप कॉल पर कॉल कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को और साथ में हम जुड़ेंगे आपके मैसेजेस के साथ।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:35 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में इतना है तुमसे प्यार। और सच बात है, जिन जिन लोगों को अपने किसी ऐसे इंसान से प्यार होता है उसके लिए ये गाना अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। और कुछ लोग इस वक्त पूरे परिवार के साथ बैठ के प्रोग्राम सुन रहे होंगे। अगर हो सकता है कि कई बार यंगस्टर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि दादा दादी या नाना नानी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, इनके पुराने गाने हैं, तो चलने दीजिए और हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़े से अपने फ़ोन पे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं। पर मैं आपको यही बोलूँगी यंगस्टर्स को कि थोड़े सा दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बात कीजिए, क्योंकि जब ये दुनिया में नहीं होते उसके बाद एहसास होता है कि काश उनसे हम कुछ सीख लेते, कुछ उनको ऐसी ऐसी बातें पता होती हैं। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो नॉर्मली हम कर ही नहीं पाते हैं, बट जब हम ऐसे एक मूड में होते हैं और ऐसे दोस्तों के साथ होते हैं, परिवार के साथ बैठे होते हैं, तो लगता है चलो भाई ये बात बहुत टाइम से नहीं की तो इस बात को भी कर ही देते हैं। तो थोड़ा सा बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, इंजॉय कीजिए। आप सबका परिवार हमेशा खुश रहे, मुस्कुराता रहे, इंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को और साथ में एक दूसरे की कंपनी को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:48 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और इस समय बहुत सारे लोग

0: अकेले होंगे, हो सकता है बच्चे बाहर पार्टी करने गए होंगे, हो सकता है किस कोई पढ़ाई कर रहा होगा, पर जो सुन रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि वो अकेले हैं, तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये गाने आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, और ये चाहे सिंगर्स इस दुनिया में हैं या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जो वर्डिंग्स हैं, वो जो गाने हैं, उनकी आवाज़ें हैं, वो आपके साथ है, इसका फ़र्क पड़ता है। तो इंजॉय कीजिए अपने गानों को, अपने मूड को रिफ़्रेश कीजिए। किसी से कोई नाराज़गी हो रखी है तो उसको बस हटा दीजिए, क्या रखना है दिल के अंदर, छोटा सा तो दिल है प्यारा सा, उसको क्यों पत्थर बनाना। चलिए यही बात से हम बात शुरू करते हैं, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ये प्यारे सा जो गाना था, जब जब बाहर आई और तुम मुस्कुराए, ये भाई अबू असलम की तरफ से था, और आयान आयाज, जायन जहीरा, काला चोटी आपी और उनकी वाइफ के लिए, और वो बस इतना ही कह रहे हैं, तुम्हें पता है मैं ये तुम लोगों के लिए गाना क्यों सुनाना चाहता हूँ, क्यों मैं तुम्हें ही याद करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दिल के अंदर बसते हो, और जहाँ पे बसते हो वहाँ पर तो फिर कुछ और रह नहीं जाता। तो मैं भी कहती हूँ ये बात सच है, बड़ों के दिल में सिर्फ उनके अपने परिवार के कुछ लोग होते हैं, गिने चुने, और उन्हीं के आगे पीछे उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। तो चलाते रहो और गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो। रिहाना साथ दे रही हैं पोर्ट लुइस से, और कह रही है रेस्ट कर रही हूँ और बेड पे आराम से, और गानों को सुन रही हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच रिहाना, आपके मैसेजेस आना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में इस समय शिमला जी हैं त्रियोले से और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। साचित जी हैं जो साथ में कह रहे हैं कि रेडियो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, मैं रेडियो के बिना रह नहीं सकता हूँ, शायद मेरा जो दिल है ना थोड़ा सा पत्थर हो गया था, बट ये गानों ने मेरे दिल को मेल्ट कर दिया है। तो बस ऐसे दिल को मेल्ट करते रहिए, थोड़ा सा नरम रखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन को भगा दीजिए, मैं हूँ आपके साथ में और ये गाने आपके साथ चल रहे हैं। ललित जी इस समय साथ दे रहे हैं USA से, और अपनी वाइफ के लिए बस इतना कह रहे हैं कि मैं जल्दी इंडिया आऊँगा और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आँखों में मेरे आंसू हैं पर दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बस इन्जॉय कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को और आप तक सिर्फ ये मैसेज पूनम जी के थ्रू पहुंचा रहा हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। क्या बात है भैया, ऐसे मैसेजेस हमारा भी दिल पे हिल जाता है। तो जल्दी जाइएगा आप इंडिया और अपनी वाइफ से मिलिएगा, बातें कीजिएगा, और जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। इन्जॉय कीजिए इस गाने को, बहुत ही प्यारा सा है, विनोद राठौर की आवाज़ में।
1: RM3 रेडियो।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:08 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ, यानी कि दिलों की आवाज़। और ये सच प्रोग्राम इसीलिए ऐसा बनाया, शायद यहाँ पर दिल की बातें होती हैं, और जो दिल की बातें होती हैं इतनी प्यारी होती है ना, आप सबके कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि एहसास होता है कि सबको क्या चाहिए, सबको अपने परिवार का साथ चाहिए, अपने आप से जुड़ने का एक टाइम चाहिए, और ये वीकेंड उसी के लिए बना है। शायद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ी सी अपने लिए जी लो, थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें कर लो अपने परिवार के साथ बैठ के, दोस्तों के साथ में, या कोई ऐसी चीज़ें कर लो जो आपको करनी है और बहुत टाइम से आप नहीं कर पाए। तो हम तो आपको इतना ही कहेंगे, ये टाइम आपका है, एंजॉय कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं इस समय उसको करते रहिए, पर हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए और इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे बातें होती हैं दिल की और प्यार की, और इसलिए आपके मैसेजेस भी पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मालिनी जी, और अपने पूरे परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। डैरन, श्वेता, रविश, प्रिशा, लोवेशा, अबादू फैमिली के लिए गाना नेक्स्ट चलेगा, और हम यही कहेंगे थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और आज आपसे मेरी पहली बार बात हुई, बहुत अच्छा लगा, दिल को खुशी हुई, ऐसे आप फ़ोन करते रहें, कई लोगों ने फ़ोन के, एक हमारी प्यारी सी दोस्त हैं सुदेवी जी, उनका बार बार कॉल आ रहा था, मैं लेना चाह रही थी और मैं उनका ले नहीं पा रही थी, पर फिर भी कहूँगी सुदेवी जी अब आप कॉल कीजिएगा, सबसे पहले मैं आप ही का फ़ोन उठाऊँगी और मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाऊँगी। रफ़ीक मोहित जी साथ दे रहे हैं और वो भी एक प्यारा सा गाना अपने लिए सुनना चाहते हैं, तो हम चलाएंगे, पर हो सकता है कि इतने सारे गानों की लिस्ट है तो मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे हो सका तो ज़रूर आपका ये गाना चलेगा, नहीं तो अगले हफ्ते चलेगा। और धानी जी साथ जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं शराबी मूवी से, तो जब वो गाना आएगा तो आप ही के नाम होगा, और हम तो यही कहेंगे आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्जॉय कीजिए टाइम को भी और इन गानों को भी। ये प्यारा सा गाना आपके लिए मालिनी जी, स्पेशली फॉर यू।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की
1: आवाज 8:21 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। तो वीकेंड है और कहते हैं ना कि वीकेंड के टाइम में हम बहुत बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं कि अरे हमने कल ये करना है, परसों वो करना है, नेक्स्ट वीक ये करना है। तो आप इतनी बड़ी लिस्ट दिमाग में रखो, लिस्ट अभी मत बनाओ, कल बनाना, क्योंकि आज आपके पास है ये टाइम, सिर्फ आपके लिए, अपने लिए है। तो अगर आप कल बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज खुद के लिए एक दिन निकालिए, थोड़ा सा मस्ती कीजिए, थोड़ा सा मजाक कीजिए, बातें कीजिए, अपने परिवार के साथ जुड़िए, अपने रेडियो के साथ जुड़ सकते हैं तो ये भी अच्छा है। कोई और चीज़ देखना है, कुछ पसंद है आपको, लिखना पसंद है उसको देखिए। अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है जो आपको पढ़ने का दिल करता है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उसे भी पढ़ लीजिए। हमारे साथ साथ हमारा गाना तो साथ चलते ही रहते हैं, पर हम आपको, कई लोग हमारे साथ इस समय मॉरिशस से बाहर से हैं, दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता वहाँ मौसम कैसा है, पर हमारे यहाँ थोड़ी सी प्यारी सी ठंडक है, थोड़ी सी बारिश है और कह सकते हैं कि थोड़ी सी पानी की कमी हो रही है। तो हम उन लोगों को, अपने मॉरिशियंस को यही कहेंगे, थोड़ा सा पानी को ध्यान से यूज़ कीजिए। और जो बाहर से हैं उनके लिए हम इतना ही कहेंगे, हमारे पास प्यार बहुत है, हम प्यार भेज रहे हैं आप सबके लिए, बस इन्जॉय कीजिए गानों को और हम मुस्कुराते रहिए, इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। और जब भी कभी आएँ तो हमारा MBC आपके लिए खुला हुआ है, आइए विज़िट कीजिए। और ये टाइम आपके लिए है क्योंकि इतने टाइम तक आप हमें सुन रहे हैं, हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं या आप कई बार कॉल्स करते हैं तो मिलने का भी दिल करता है। इन्जॉय कीजिए अपने गानों को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 8:41 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ और मैं इस समय आपके साथ हूं पूनम। हमारे बीच में एक ऐसी प्यारी सी बच्ची है जो कि बहुत ही प्यारी लिसनर है, जिसको बहुत सुनना पसंद है, पर अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। उनके मामू उन्हें बस ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है, मेरा दिल इधर से उधर होने लगता है और मेरी मैं तो यही कहूँगा कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए पर तुम जल्दी ठीक हो जाओ। रकीबा, अगर आप इस समय हमें सुन रही हैं और हम भी यही दुआ करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, अपने घर पर रहिए, अपने परिवार के बीच में रहिए और जो भी इस समय जिनकी भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि वो अपने अपने घर में हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक रहें। अगर आपको जो भी मेडिसिंस दी हुई हैं डॉक्टर्स ने, उसको अच्छे से लीजिए, बीच में कहीं पे भी स्किप मत किया कीजिए। यही होता है, 2-3 दिन दवाई लेते हैं तो, और जब थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो रोक देते हैं दवाई। बिल्कुल मत रोकिएगा, दवाई पूरी कीजिएगा और गानों के साथ में अपने जो काम कर रहे हैं उसको भी करिए, पर अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। हो सके तो रात का, अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो जिनको दूध लेना पसंद है गर्म, वो दूध ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं साथ में, मतलब ऐसा कुछ ऐसी थोड़ी सी गर्म चीज़ें लीजिए जिससे आपकी सेहत पर बने, आपको अच्छी नींद आए आराम से। थोड़ी सी कई बार पूरे दिन की थकान बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपको खरांटे वाली नींद आती है और जब वो नींद आती है ना तो उसके बाद एहसास होता है कि नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। सोते रहिए, इंजॉय कीजिए गानों को और जब नींद का टाइम आएगा तो बस ऐसे खरांटे मार के सोना और बस कहना कि हाय पूनम ने कहा था खराटे मार के सोना है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि एंजॉय कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: तो दोस्तों पता ही नहीं चला आपके साथ ये दो घंटे कैसे निकल गए। गाने चलते रहे, हम बातें करते रहे, बाहर ठंड ने अपना रंग दिखा दिया। अब आप अपना वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा और हाँ, अपना अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए, नमस्ते, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का।
3: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर हाई बा स्टूडियो के घड़ी में अभी 9:03 हो गल बा और आप सब कोई के साथ है देवत हवन रत्ना जहां कहूं से भी साथ है देवत हवा बस आशा है ये रखब जाके आप सब कोई अच्छा हुआ मजे में हुआ तो चला आज के कार्यक्रम के संगे जुड़ जाइए और मजेदार कार्यक्रम के साथ साथ जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के ते हर हिया तोहर हिया बा कोनो ऐसन खास मौका जन्मदिन के मौका या फिर शादी के सालगिरह के मौका ता तू अपन प्रियजन खातिर एगो बढ़िया भोजपुरी गीत डेडिकेट करे सकब 4028085 पर जी हाँ 4028085 पर हमने के तू टेलीफोन करे सकब और ये मेसाज विदा करे खोजा

तो चल आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर अब जाए बढ़िया गीत कुणाल हीरेलाल की आवाज में रखल जलसा की रात

0: भोजपुरी तड़का
1: जाने ला थपरी बजाई बा तो तोहर लासों ते बहुत अच्छा रही बहुत निमन रही आउरी ऐसन ऐसन जब गीतवा बजेला ता थपरी बजाई के मन करेला तब बजाओ थपरी के तोरा रोकता तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा बहुते बढ़िया बहुते मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर ढेर कोई श्रोता लोगन हमनी के संगे जुड़ गल हवन बहुत बहुत धन्यवाद और बस ऐसने प्यार से साथ दे दे रही है जा हैजा पर विश्वानी दुमन हमनी के साथ देवत हवन वाकवा बगल से और ही अपन बहिन इंदिरा शारदा और सखी हवन नीला और प्रतिभा और साथ देवत हवन शोभा जी और गीता गजादर खातिन कैसे बनी चटनिया है गीत के वो मांग कर ले हवन तो चला भाई दानन बीजन के आवाज में रखल है गीत चलाओ अब जा थोड़ा घड़ी में तोहर खातिन और मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर जितना कोई साथ है देवत हवन बस ऐसने प्यार से साथ देते रहिया जा और का बोला हमर चाचा गजोदर जोन हा ऊ त एगो नमूना आदमी हा जाने ल दोक्तिया ओकरा बोलले बा फजीरे उठ के तनी घूमे जाई के

तो हम चाचा के बोलनी, चाचा क्या करत हवा, जात हवा ना घूमे। बोले कितना घूमब है, दुख के हमने के बोले घूमे के कितना घूमब। बोला था धरती तक घूमता, अब हम भी घूमब। कितना घूमब, धरती घूमत हवन, अब हम भी घूमब। तो घूमते घूमते हमने के घूमरी नहीं लगी हो, आइए तब बोलत हई। हई का बोलब दोक्तिया के, हम तब रंज हो गई नी दोक्तिया से।

0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम औरी चला। अभी तक श्रावण के मास चला था और श्रावण के महीना में एगो बढ़िया शिव महिमा के गीत के मांग करत हवन नवीन जी, नवीन लक्ष्मण हमनी के संगे जुड़ गल हवन रोज बेल बगल से, और प्यारी पत्नी चित्रा खातिन। और आज चित्रा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन। चित्रा जी तोरा बहुत बहुत प्यार हमर बगल से, और चला अगला गीत जन है तोहर खातिन चलाओ अबजा लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल और निवेदित और सच्चिदानंद जी संगे जुड़ गल हवन मेबग से। ललिता और धनराज जी साथ देवत हवन अपन बेटी स्वीटी संगे मॉडल बया बगल से। राज और अमृता उबिलक हमेशा जुड़ल रहेलन हमनी के साथ न्यू ग्रोव से, और घोंबुआ बगल से रमेश और प्रीति जी साथ देवत हवन बहुत बहुत धन्यवाद। और चला हईजा पर सुनीता जी भी साथ देवत हवन गांव गोब से, और उनकर बहिन हवन विमला अमृता जी और वीना जी। आज तक विमला जी कोंगोमा से निकल के गल हवन मोताई ब्लॉश बगल, उनकर बेटी कविता हियां घूमे। और जे तू सुनत हवन राजो तो चला तोहर खातिन हई अगला गीत चलाओ अब जा, बहुत मजेदार बहुत बढ़िया गीत। और चला बहुत बहुत प्यार से कविता जी हियाँ तू अपन छुट्टी मनाइय। और साथ देवत हवन हैजा पर चाची शांता सुकागी से जमील फोर साइड से, उनकर पतो हवन किरण बेटा सुदेश साथ देवत हवन फावेश और संजना नाती और नातिन, और उनकर बेटा लोग हवन सुजीत अशोक और गाविन भैया खातिन। चला मजेदार गीत संगे शिव के महिमा है गीत सुनब जा साथ मिल के, औरी का बोलब जा हंसते मुस्कुराते जीवन आगे बिता आगे बढ़ावे के चाहिला काहे के जाने ल। जो जीवन है बहुत थोड़ा घड़ी में फिनी हो जाए, इसीलिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। और हमर चचा जोन है ना का जनी कहाँ से जब देखा तब चचा चाची संगे गाल बजावे लन से, जब देखा तब चाची संगे झगड़ा करे ला, औरी जाने ला चाची के कौन ची बोले जाने ला बुढ़िया। हाँ हाई जन पुरुष लोग हवन युद्ध जीत लेलक, धरती जीत लेलक, समुद्र जीत लेलक, यहाँ तक कुछ नहीं आसमान भी जीत ले लगा। और तू महिला लोग अभी ले कौन सी जीत ले हवा बोला था, तो चाची भी बोले हाँ हम महिला लोग जाने लीसन मेकअप लगा के तोहर नियर बुढ़वा के तोहर नियर पुरुष लोग के जीत ले वेला दिलवा। और का चाहिला
1: चला सुनब जा शिव के महिमा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जा पर ढेर कोई काम पे से अभी घरे चलाल हवन और साथ देवत हवन तो चला है जा पर हमनी के प्यार से साथ देवत हवन रिहाना जो फिनिक्स से साथ देवत हवन और बहुत ही प्यार से आज उ जन्मदिन के बधाई देवत हवन अनुष्का के जेकर जन्मदिन बा आज और खासकर मामा रेशमा साथ देवत हवन पापा शैलेश और दादी हवन रीटा और सब सीतालू परिवार मोता बा बगल से हमनी के साथ जुड़ गल हवन तो चला आज के कार्यक्रम के लाजवाब मजेदार गीत संगे सजावत है भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जोन कार्यक्रम हा सब कोई के पसंदीदा कार्यक्रम हा चला हैप्पी बर्थडे के है गीत के मांग कर ले हवन रिहाना उनकर खातिन त जरूर चलाओ अब जा है गीत और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा जाने ल हमर चाचा जोन है चाची और चाचा चाची बहुत खीस करे चाचा संगे और चाची जाने ल चाची खीस करे अच्छा है चाची चाचा से बोले काहे तू इतना शराब पिए ल हो तो चाचा बोले हाँ तू काहे इतना मेकअप सब सब लगावेला काहे तू ब्यूटी पार्लर इतना जाल हो बोले देखा तू शराब छोड़ दिया हम नहीं अच्छा हम खुशी नहीं है तो चाचा बोले हाँ तू भी ब्यूटी पार्लर जाई के तनी छोड़ दिया तो चाची बोले जाने ल हम ब्यूटी पार्लर जाई ला तोहर खातिन तनी सज संवर के तो तनी तनी जोली लौकब त तू हमनी के दिखब त चाचा बोले हई ये खातिर त हम भी शराब पीला हो हम जब शराब पीब त तू तनी जोली लौकबे ना हमनी के हइये से शराब पीला का हो चाचा ऐसे बोल दिलक तू चाची के

अभी तक का कार्यक्रम 9:29 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर ढेर कोई हमनी के साथ देवत हवन त चल हंसते मुस्कुराते हईजा बहुत प्यार से साथ देवत हवन हमनी के अनीता जी अनीता लाल जी जे जुड़ गल हवन।

भाईजा पर मौ डालबिया बगल से और ईतू परिवार गोगा परिवार और नागेश्वर परिवार खातिन अगला गीत के उमंग कर ले हवन रोशन सदा सिंह के आवाज में रखल एगो बढ़िया गाना तो चला सुनाओ अब जा और इस संगे मिलकर सुनब जा और है गाना जौन है बहुत मजेदार वंदना हमर सोना और ये वंदना नाम के जन छोकड़ी रही वो तो जस्ती खुश हो जाए है गीत सुन के चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिया जा और चाची और चचा के चुटकुला चाची और चचा के बात का बोला चाची चचा से बोले पहला तो शादी से पहला तो तू हमनी के रबड़ी बोलत रहल बर्फी बोलत रहल इतना प्यार से हमनी के कैसे कैसे नाम से बुलावत रहल रस मलाई सब बोलत रहल अब शादी हो गल तो काहे नहीं बुलावेला है सब नमवा से तो चाचा बोले देखा दूध के जन चीज रहेला ना दूध के जन मिठाई रहेला ना वो दो दिन से जस्ती अच्छा नहीं लगेला खाई के समझ रहे समझ गए ले

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला 9:35 हो गल बा और हईजा पर भाई माहेन हमनी के संगे जुड़ गल हवन माल पालमा बगल से और उनका दीदी मान भी हमेशा हमनी के साथ है देवेलन तो चला बहुत प्यार से साथ देते रहिए जा जरूर बुझाता धमाल तो शुरू हो ये गल बा तो धमाल चरी रात के 11 बजे ले और ही मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई हमनी के साथ है देवत हवन ऐसे प्यार से साथ देते रहिए जा और ही मजेदार कार्यक्रम संगे चला हईजा पर गायत्री जी साथ देवत हवन अल्फोंस बगल से बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन भौजी हवन शकुंतला मोहतायलोंग से और खास सखी हवन गीता बाई और ही हमनी के बोले तनी बढ़िया गीत वा चला द लागी नाही छूटे राम जरूर चला देव तो हाइये गीतवा चलावब ललिता जी खातिन ललिता कुशल जे त्रियोले से साथ देवत हवन और वो भी बहुत खुशी रहेलन है गीत सुने के और आज उनकर प्यारी बेटी आरती के जन्मदिन बा तो चला आरती आरती के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवब जा और दमाद बाबू हवन विकास साथ देवत हवन बेटा विशेष और विधि पुपू वीना और साथ है देवत हवन ललिता जी ममा ललिता हवन साथ हवन सुदेवी जी और ज्ञानी देवीना साथ छोटी पोलाव जैसे दादी प्रभावती भाई हरीश भाई आत्माराम मालाराम जावन सुखलाल मौसी खातिर और का बोले अब हमार चचा जोन हा कौन दिन गल एगो बाबाजी हियाँ जाके बोले बाबाजी तनी हमनी के समझाव तनी ज्ञान द कि हम अपन भीतर के जोन कमी हा ओकरा कैसे जानब कैसे हमनी के पता चली कि हमार भीतर कौन कौन कमी बा तब बाबाजी बोले बेटा बहुत सरल हा बहुत इजी हा तू अपन पत्नी के एक के गो गलती बताइए ओकरा और फिर देखा तोहार कमी तोहार परिवार के कमी तोहार संगतिया के कमी सब एक के बाद एक उ तोरा सुनते जाए और जे तोरा और मन बा सुने के तो खाली अपन बुढ़िया के माता पिता के बुढ़िया के मतलब अपन तोहर ससुराल बगल के तनी कमी बताइए ओकरा वो तोहर पिछला जन्म के सब कमा सब सब कमी बता दे तोरा समझ गई ला बोले बाबा जी तोहर चरण कहाँ बा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर 9:41 और सब कोई हमने के साथ देवा धवन ता चला ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया गीत आज हमने के श्रोता लोग चुन के अनले हवन और है जहाँ पर धर्मदेव जी हमने के संगे जुड़ गल हवन पुदो अमलेट से आउरी जैसे अभी थोड़ा घड़ी पहला लागे नहीं छूटे राम के हाईजुन गीत तो सुन ला लता मंगेशकर और तलत महमूद के आवाज में एक और गीत के वो मांग कर ले हवन है ये मूवी से लाले लाल होटवा से रस चुएला आउरी मजेदार गीत संगे ऐसा ऐसा बढ़िया गीत सुनब जा और साथ देवब जा सब कोई के आउरी हमर चाचा चाची के किस्सा का बोला भो कौन दिन चाचा चाची से पूछे हाय वशीकरण कौन ची हा तो चाची बोले हा जाने ल जोन व्यक्ति के कोई अपन प्रभाव से वशीभूत कर लेवेला और अपन मन पसंद काम करावेला ओकरा बोलल जाला वशीकरण त चाचा बोले धत पगली हाय वशीकरण थोड़ी हा हाय त शादी हा शादी में भी त ऐसे नहीं होला बोले का हो ऐसन बोलत हवा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का

भीतर का कार्यक्रम तो चला गया बढ़प सा और बढ़िया गीत लाल मुनिया सोना नोयन के आवाज में रखल हाई गीत वा रफिक जी खातिन चला बाबा रफिक मोहित जो हमने के साथ देवत हवन ताई आग बगल से तो चला उनकर परिवार खातिन चला बाबा हाई बढ़िया सन गीत और हमर चाचा के किस्सा तो सुनते चला जाने ल हमर चाचा बोले जाने ल हई जन महिला लोग है तीन हल्ला शॉपिंग करे जाला

खाली तीन हला मतलब मतलब पहला हला वो खाली देखे जालन सब कि कहाँ कौन चीज कौन भाव में बिकता। दूसर दिन वो जयन खरीदे जे खरीद ले जब फिनी नहीं होला तीसर दिन फेरों से जालन सब। हम बोली का है तीसर दिन कौन ची करे जालन सौजे करावे काहे के तीन हल्ला जब ले नहीं जयन तब ले ओकरा शॉपिंग जोन हाउ फिनी नहीं होला।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम देखते देखते चला 9:54 हो गल बा औरी मजेदार कार्यक्रम 11 बजे चली और हैजा पर भाई अबू आफिज और संगे हवान असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी आपी और उनकर पत्नी और उनका सब परिवार खाती चलाओ अब जय हलाल के आवाज में रखल मच्छी मरवा के है गीत का है के भाई अबू हमनी के बोला आज उनकरा मच्छी खाए के मन करता तो चला हैजा से तोहर खातिन है बढ़िया गीतवा चलाओ अब जा और जाने ला हमर चाचा जोन हा बहुत सत्संगी हा भी बहुत सत्संग करता लेकिन सत्संग से कहां ओकर दिमाग में का जानी कौन बात चलावेला हमनी के बोले जाने ला हाउ जन रामायण में वाली रहल जाने ला ना वाली के एगो वरदान मिलल रहल हम बोली हाँ चाचा वाली के है वरदान मिलल रहल ना कि ओकरा ओकर से कोई भी लड़ाई करी कोई भी युद्ध करी तो ओकर जोन शक्ति हौ वाली के भीतरे चल जाई ओकरा आधा शक्ति मिल जाए बोल रहे हाँ वाली है रहल द्वापर युग के वाली सलमा जाने ल कल युग में बुझाता है जोन वाली है वो फेरों से प्रकट हो गल बा हम बोले सच्चे कैसे जानब बोले हाँ है जोन वाली है वो घर वाली बन के प्रकट हो गल हवन काहे के हमर जितना शक्ति है वो आधा हमर शक्ति सब खींच ले वेला तू काहे झगड़ा करेला चाची संगे

चल रात के 10:02 हो गलवा भोजपुरी दल का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम के संगे संगे आप सब कोई के साथ देवत है और रात के 11 ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखब जात चल मजेदार कार्यक्रम संगे हईजा पर हमनी के साथ ढेर कोई जुड़गल हवन और हईजा पर हमनी के साथ देवत हवन पूर्णिमा फुकीरा जी तो चल उनकर खातिर अगला गीत चलावब जा और उनकर चार गो बेटी प्राविनी पिंकी पूनम और पूजा और साथ देवत हवन उनकर बेटा प्रवेश और पतो हवन साथ देवत हवन और फुकीरा परिवार देवी दयाल परिवार कालिया चेटी परिवार और उनकर सब SSRN के स्टाफ लोग खाती नगला गीत चलाओ अब जात चला हंसते रहिया मुस्कुराते रहिया और गंगा मैया के हई गीतवा उनकरा खातिन उनकर खातिन चलाओ अब जा और हमर पप्पू भैया के त किस्सा सुनते चला पप्पू भैया कोन दिन अपन गर्लफ्रेंड से भेंट करे गल और गर्लफ्रेंड के जाके बोले बाबू जाने ल अभी लेसांस के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गल बा तो कर गर्लफ्रेंड बोले हाँ तो हम का करी पेट्रोल के भाव है लेसांस के भाव जनतनी जस्ती बढ़ गल बा तो हम का करब हो बोले नहीं हम तो बोलत रही कि जौन दिन तोरा मन करी ना तनी लॉन्ग ड्राइव करे के तो तनी आधा पैसा दे दिया हमर खातिन जेकर में हमनी के उतना महंगा नहीं पड़ी हो

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:09 और मानती जी हैजा पर हमनी के साथ जुड़गल हवन हल्दी से भाग भाग के धौ धौ के वापस चला काहे के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम शुरू हुई 9 बजे से लेके 11 बजे ले और हमनी के संगे जुड़गल हवन नोवेल फर्स्ट बगल से दुगो बहिन अनंती और आरती साथ हवन भव्य पुष्कल और हितांशु और गिरीशा और मृदा खातिन चलाओ अब जा अगला गीत गिरीशा और

मितिशा खातिर। तो चलो मजेदार गीत और संतोष महादेव के आवाज में रखल है गीत गरम गरम दाल कचू और है गीत खास कर उनकर खातिन जब भी हरदी में हवन और हरदी के समय में कचू और पूरी खाए के जो मजा है वो तो बढ़िया रहेला लाजवाब रहेला। और ही हमर चाचा जोन हा का जनी को दिन ऐसे मुंह लटका के बैठल रहल हम पूछने कौन चे होल चाचा काहे रोज रोज नियर तू अपन मुंह जोन हा इतना लंबा बना के बैठल हव। बोले जाने ला छोटा रहले ना हमर जब परिवार जब आत रहल हमर दादा हमर नानी नन्ना सब आत रहल तो हमनी के पैसा देवे तो हम तो छोटा रहली तो उतना तो अकल नहीं रहल हमनी के कि पैसवा से कौन ची करब तो हम तो सोचत रहली आशीर्वाद देते तो जस्ती अच्छा रहते ना आशीर्वाद देते तो हम तनी पढ़ लिख के तनी डॉक्टर बन जाती तो आशीर्वाद नहीं देलक हमनी के पैसवा दे के चल जात रहल। अब जब बड़ा हो गल है तब कब पैसवा के जरूरत पड़ेला तब लोग हमनी के पैसवा नहीं देवे हमनी के आशीर्वाद देवे बोला आज पैसवा के जरूर है तब पैसवा नहीं देवता आशीर्वाद देवता कहाँ जाता दुनिया कहाँ जाता है हमर समाज अरे कहाँ जाता हम कैसे जानब चचा हमनियों के है ये हाल बा तनिक गरम गरम दाल कचू खा ला

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है और हई जा पर हमनी के साथ देवत हवन ग्रीना जे फ्लो गयाल बगल से हमनी के संगे जुड़ गल हवन। और आज के कार्यक्रम में हमनी के बोले विनोद सिवदत्त के आवाज में रखल ठेला ठेली के हई गीतवा तनी

मर खातिन चला द बहिन काही नहीं हो और है गीत चलावब जा बेटी परी खातिन जे हमने के साथ देवत हवन मोताबा बगल से त चला बढ़िया गीत विनोद शिवदत्त के आवाज में रखल बीस स्टॉप में ठेला ठेली अब बीस स्टॉप में त छड़ो चाची के घर में जितना ठेला ठेली होते रहेला जाने ल चचा कोंची कलन काल अपन पड़ोसन संगे जाके फिल्म देखलन त चाची खिसिया गल अच्छा त सच्चे ह चाची ढेर खिसिया गल और खिसियाते बोले चाचा के का हो हम सुनले हई काल तू पड़ोसन संगे फिल्म देखे गल रले बोले हाँ बुढ़िया का बताओ तोहरा जाने ल हई फिल्म संस्कारी फिल्म नहीं रहल पारिवारिक फिल्म नहीं रहल उही खातिर हम पड़ोसन संगे गल रली समझ गई ल काहे के हई फिल्म अच्छा नहीं ह संगे बैठ के देखे के और हमर बोली चाची चचा के बतवा की सच मान लेला।

0: भोजपुरी तड़का
1: राजा बंधु की आवाज में रहल थोड़ा जीले हई बढ़िया संगीत और चलाए कर संगे संगे आगे बढ़ब से और हई जा पर बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई हमनी के साथ है दिवत हवन बस प्यार से साथ है देते रहिए जा और मजेदार गीत के कार्यक्रम के संगे चला अगला गीत जो है अभिमन्यु हरपाल की आवाज में रखल और हई गीत चलाओ अब जा पंडित राज वर्मा खातिर जे पेची तकाफ़े से हमनी के साथ हमेशा साथ है जुड़ल रहेलन और बड़ुआ परिवार खातिन अगला गीत के मांग करले हवन और ये हमर चचा जाने ल बोले हमनी के हाई जोन मीन पकावेलन सब कोई मीन में और बुढ़िया में बहुत अंतर नहीं रहेला हमने का बोला था वो चचा बोले देखा मीन पकाए के 2 मिनट लगेला 2 मिनट में वो बन जाला हाँ तो वो कहाँ कहाँ कहाँ से कहाँ तू जोड़ा था तब बुढ़िया पे कहाँ कौन अंतर बा बोले मीन बनेला 2 मिनट में वो बन जाला पक जाला और बुढ़िया जोन रहेला वो 2 मिनट में बिगड़ जाला कुछ भी बोल बा तो मुँह चढ़ जाला उकर

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और ही चला है जहाँ पर 10:32 हो गल बाद देश ताकू पंसा पसंद के आवाज में रखल है अगला गीत पसंद कले हवन विजय बंधन जी क्लावेज से उनके प्यारी पत्नी उनकर प्यारी पत्नी रेखा तीन गो बहिन चंदनी बिंदु कुमारी उनकर सब संगतिया खातिन उनकर सब परिवार खातिन और आदेश ताको परसान के आवाज के रखल हई गीत है एल्बम छोकरा के छोकरी तो चला सुनब जा हई मजेदार गीत

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और तो सुना था और रात के अभी 10:40 हुआ था तो चलो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आगे बढ़ब सा छोटी पोलाव जैसे हमने के संगे जुड़ गल हवन और भाई आत्माराम दादी प्रभावती चाची ललिता और उनकर सब संगतिया खातिन चलाव अब जा विनोद शिवदत्त के आवाज़ में रखल है अगला गीत।

0: गाना
1: भोजपुरी गाना विनोद सूदत के आवाज में रखल हई गीत के बाद चला सुनीता ननकू के आवाज में रखल अगला गीत चमेली चमेली और हई गीत शोभा जी सुदेवी जी खातिन चलाव अब जा जे अभी वाकवा से हमनी के साथ देवत हवन दीदी ललिता कुशल खातिन जे त्रियोले से साथ देवत हवन भाई आत्माराम खातिन सुनीता शोभा देवीना और मलेगा के राम रतन परिवार चला एकर संगे नाम जोड़ अब जा नीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जूलिया विलास बगल से

घुमाइते घुमाइते चमेली के घुमावत हवन है जा पर चाची चमेली भी बहुत घूमेलन स चचा जोधर संगे और 10:52 हो गल बा। राधा जी हमनी के साथ देवत हवन वेलफॉन्स से आज उनकर बहिन आरती के जन्मदिन बा। कथ बोन से साथ देवत हवन उनकर चार गो लड़का चार गो बहिन की ओर से भाई राकेश की ओर से और साथ हवन भगीना भविष्य और नीतीश और प्रताप परिवार और निंजू परिवार की ओर से साथ है देवत हवन। तो चलत तोहरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई आरती जी खासकर तोहर बहिन राधा बगल से।

जे कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन उन सब कोई खातिन है ये गीत। और चला आज के कार्यक्रम भाई, आज लगभग लगभग कार्यक्रम समाप्त हो बता पर ढेर कोई हमनी के गीत मंगले बा। आई जा पर कल्याणी जी हमनी के संगे बहुत शेरी से जुड़ गल हवन। और अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल अगला गीत के वो मांग कर ले रहलन। और साथ ही साथ श्यामा रघुनंदन जी भी साथ है देवत रहलन शारदा सिन्हा के वो गीत मंगले रहलन। और साथ देवत रहलन शोभा जी का थोबोन से उनकर बड़ा भैया खातिन जे जिनकर तबीयत उतना अच्छा नहीं बा पर अभी समाप्त हुआ था समय भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के। और सुदेश बोईजू के आवाज़ में रखल हाई गीत करब जा माहेन भैया खातिन जी हमनी के साथ है देवत हवन। तो चला सुदेश बोईजू के आवाज़ में रखल हाई ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हुआ था। आशा करब जा कि आप सब कोई हमनी के बहुत ही प्यार से साथ देलन। और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सब कोई के। और हमनी के बाद सुनहरे पल कार्यक्रम तू सुने सकब नीतूषा की प्रस्तुति में। तो चलो इसी के साथ बस आज के कार्यक्रम भाई जा पर समाप्त करत हैं। फेरों से भेट आप आवत शाम दी के। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। रेडियो मॉरिशस के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतुषा का कर्ज और प्रणाम। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आइए श्रोताओ, आज हम आपको खयाम साहब, जो मशहूर संगीतकार रहे, उनकी दुनिया में ले चले हैं।

भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में अगर किसी संगीतकार ने अपनी मधुर धुनों, सादगी और शास्त्रीय संगीत की खूबसूरती से हमेशा के लिए अपनी अलग पहचान बनाई, तो उनमें से एक बहुत ही सम्मानित नाम है खयाम साहब। पूरा नाम मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी था। उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राहौन गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने संगीत और फिल्मों का बहुत शौक था। महान गायक अभिनेता के.एल. साइगल से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही संगीत को अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर लिया। शास्त्रीय संगीत की गहराई तालीम ने उनकी धुनों को एक अलग ही रूहानी एहसास दिलाया।

अपने संघर्ष के दिनों में खयाम साहब ने कुछ समय तक सेना में भी सेवा दी। इसके बाद वे मुंबई आए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कठिन संघर्ष किया। शुरुआत में उन्होंने एक म्यूजिक ड्यूओ के रूप में भी काम किया, लेकिन बाद में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उनकी प्रतिभा चमक उठी। फिल्म फिर सुबह होगी ने उन्हें पहली बड़ी पहचान दिलाई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

सबसे बड़ी खासियत थी कि वे संगीत में कभी अनावश्यक शोर या भारी ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका मानना था कि गीत की असली ताकत उसके बोल, भाव और सुरों की सादगी में होती है। इसलिए उनकी हर धुन दिल को सुकून देने वाली होती थी। उन्होंने गजल, शास्त्रीय संगीत और कविता को इतनी खूबसूरती से अपनी रचनाओं में पिरोया कि उनका संगीत हमेशा के लिए अमर हो गया।

बॉलीवुड को कई अमर फिल्मों का संगीत दिया, जिनमें कभी कभी उमराव जान, नूरी, बाजार, राजिया सुल्तान, आखिरी खत, थोड़ी सी बेवफाई और दर्द जैसे नाम शामिल हैं। इन फिल्मों के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने दौर में थे। कभी कभी मेरे दिल में, दिल चीज क्या है, इन आँखों की मस्ती, फिर छिड़ी रात, दिखाई दिए यूं और आजा रे ओ मेरे दिल बर आजा जैसे गीत उनकी बेमिसाल कला के जीते जागते उदाहरण हैं।

साहब ने लता मंगेशकर, आशा जी, रफ़ी साहब, मुकेश दलत महमूद, भूपेंद्र, जगजीत कौर और येसुदास जैसे महान गायकों के साथ काम किया। उनकी पत्नी जगजीत कौर भी एक प्रतिभाशाली गायिका थी। दोनों की जोड़ी संगीत जगत में बहुत सम्मान के साथ देखी जाती थी।

एक बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि खयाम साहब ने अपने पूरे करियर में बहुत अधिक फिल्मों में संगीत नहीं दिया, लेकिन जितनी भी फिल्मों में दिया हर गीत को एक अनमोल हीरे की तरह तराशा। उनका मानना था कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है, इसी वजह से उनका हर गीत आज भी एवरग्रीन माना जाता है और हर पीढ़ी के संगीत प्रेमी उसे बड़े शौक से सुनते हैं।

असाधारण योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी अनोखी प्रतिभा और भारतीय संगीत को दिए गए अमूल्य योगदान का प्रमाण है।

अगस्त 2019 को खयाम साहब इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी मधुर धुनें आज भी हर दिल में जिंदा है। उनका संगीत हमें ये सिखाता है कि असली कला कभी शोर नहीं मचाती, बल्कि खामोशी से दिलों में उतर जाती है। खयाम साहब सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, बल्कि सुरों के एक ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को नज़ाकत, गहराई, शायरी और रूहानियत का अनमोल उपहार दिया। जब भी बॉलीवुड के सुनहरे संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, खयाम साहब का नाम बड़े गर्व, सम्मान और श्रद्धा के साथ हमेशा लिया जाएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली
1: क्यों
0: आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे

0: में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
2: हाँ।
0: रातकली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो। तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो, चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे और

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे